सच्चे रते से निर्मले सदा सची सोए ऐथे कर कर जाप दे आगे जुजुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपै नाए ओ रंग लह ना जाए रहाओ। हम नीच मैले अतब मानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिलिया कंचन होए निर्मल ज्योति अपार। बिन गुर कोय नारंगी है गुर मिलिया रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जोर ते सिफती सच समाओ। पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावणे झूठे ठाओ ना कोए। जिसनो आपे रंगे सो रप सी सत्संगत में लाए पूरे गुर ते सत्संगत उपजै सहजे सच सुभाए। बिन संगति सब ऐसे रह जैसे पस ढोर जिन कीते तिसै ना जाननी बिन नामै सब चोर। एक गुण में हाजै अवगुण विकण है गुर कै सह सुभाए गुर सेवा ते नाउ पाया उठा अंदर आए। सबना का दाता एक है सिर तंदै लाए नानक नामे लाए सवारियां नु सबदे लय मिलाए। आसा महला तीजा सब नावै नौ लोई दी जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावै सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए। तू बेअंत दयाल है तेरी सरनाई गुरपुरे ते पाई है नामे वड्याई। अरहाओ अंतर बाहर एक है बहुविध से ट्यो पाई हुक्मे कार कराईंदा दूजा किस कही है पाई। बुझणा या बुझ

सुंदर सुगड़ सुजान प्रमेरा जीवन दर्श दिखाए जो जी तोते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कह न जाए साची प्रीत ना टुटे प्यारे जो जुग रही समाए जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर न जाए नान करंग रते नारायण प्यारे माते सही सुभाए साबे तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए तू

दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। तदै तार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिसदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सोहागण भैने, कंत न कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण कहो परपंच किया, देखै बूझै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहिया। फफै फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा टालन आप लगा। पब्बै पालै ऐसे फल पावै, गुर प्रसादी जिन को पौ पया। मन मुख फिरै ना चेतै मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़िया, मम्मा अखर विसरिया। यही है जन्म ना हो वी कदी, जेकर सच पछाण। गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारै रव रहया सब यंत्र, जेते किए जनता। जन तो पाए तंदै सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लया। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, भाणै ताकै हुक्म पया। ववै वास दियो परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखै चाखै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी, तुसै ते आवो जे अमर होवा, तुसै ते आवो।

हर कीर्त रोते आई, हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नाम है, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लिखाए जियो, कल युग हर किया, पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टिकाए जियो, आसा महला चौथा, हर कीर्त मन पाई, परम गत पाई, हर मंत्र मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया, गुरमत हर त्याया, तुरमस्तक भाग पुराण जियो, तुरमस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नाम मैं हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नाम मैं हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीर्त मन पाई, परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया, परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सिरे वै, खिन खिन भगत होवै, जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया, परम सुख पाया, मुख पागा रत्ती चारे, गुरमत हर गाया, हर हर उर पाया, हर नामा कंठ तारे, सब एक दृष्ट समत कर देखै, सब आत्म राम पछान जियो, हर हर जस गाया, परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई, हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर हर आराध्या, गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए, हर अमृत सोए, जिन पिया सुबिद जाने, तन तन गुरु पूरा प्रपाया, लग संगत नाम पिछाणे, नामो सेव नामो आराध्य, बिना मैं अवर ना कोए जियो, सत संगत मन पाई, हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, कढ लेवो शब्द सुभाए जियो, मोह चीकड़ फाथे, निगरत हम जाते, हर बहां प्रभु पकराए जियो, प्रभ बहां पकराई उत्तमत पाई, गुर चरणी जन लागा, हर हर नाम जपया आराध्या, मुख मस्तक भाग सपागा, जन नानक हर कृपा तारी, मन हर हर मीठा लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, कढ लेवो शब्द सुभाए जियो, आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भक्त जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ, गुर करे पसाओ, जीवन मुक्त सुख होई, जीवन मरणो हर नाम सुहेले, मन हर हर हृदय सोई, मन हर हर वसिया, गुरमत हर रसिया, हर हर रस गटाग पियाओ जियो, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मत जंपक रह लै जाए जियो, हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, एहो जियाड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जय, हर वस्त लोड़ी जय, जिसकी वस्त सो लै जाए जियो, मन मुख करण पलाव कर भर में, सब औखद दारू लाए जियो, जिसकी वस्त प्रभ ले सुमामी, जन उपरे शब्द कमाए जियो, जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मत जंपक रह लै जाए जियो, तुर मरण लिखाया, गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, हर शोभा पाई, हर नाम वडियाई, हर दरगह पैंदे जान जियो, हर दरगह पैदे, हर नाम सीधे, हर नाम ते सुख पाया, जन मरण दोवै दुख मेटे, हर राम नाम समाया, हर जन प्रभ रल एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरण लिखाया, गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै, बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्त्र होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए, हर रस करसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया, मुआ जीवाया, फिर बाहुड़ मरण ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नाम है अवर ना कोए जियो, जग उपजै बिनसै, बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्त्र होए जियो, आसा महला।

माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़ै नाही लै चले कत गलावया। हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ से जा रावया। लब लोभ अहंकार माता, गर भया समायण। नानक मिर्ग अज्ञान बिनसे, न मिटाय अवन जायण। मिठै मख मवा क्यों लय उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी। तरन दुहेला पया खिन मैं, खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायो। गुजा कमाणा प्रगट होवा, ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे, लग प्रभ की चरणी। कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया। सा संगत आप होवा, आप जग तराया। राख लिए रखण हारे, सदा निर्मल करणी। नानक नरक न जाहे कबहू, हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सवा परणा, प्रभ संग सोहंती। संगे सोहंती कंत स्वामी, दिन सरैणी रावी है। साच तार जीवा, प्रपेख हर गुण गावी है। बिरहल जाया दर्श पाया, आम्यो दृष्ट सिंचंती। बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी, मिले जिस खोजंती।

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहने ना पायो, बिन सतगुर कहने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हों विच आया हों विच गया, हों में जमया हों विच मोआ, हों में दिता हों विच लया।

अवतार हौं विच हसै हौं विच रोवै हौं विच भरियै हौं विच धोवै हौं में जाति जनसी खोवै हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा मोख मूत की सार ना जाना हौं विच माया हौं में छाया हौं मैं कर कर जन तो पाया हौं मैं बूझै तांदर सूझै ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै नानक हुक्मी लिखिया लेख जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा हौं मैं हा जात है हौं मैं कर्म कमाहे हौं मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे हौं मैं कितों उपजै कित संजम एह जाए हौं मैं एहो हुक्म है पया किरत फिराहे हौं मैं दीर्घ रोग है दारू पिए समाहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक कह सुनो जना इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो साहित्य आया उन्नी मंदै पैर न रखियो कर सुकिरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवै चढ़ै सवाया वड्याई वड्डा पाया सलोक महला पहला पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां हां दीपां लोवां मंडलां खंडां वरपंडां हां अंडज जेरज उत्पजां खाणी सेत जां हां सुमत जाणै नानका सरा मेरा जनता हां नानक जन तो पाए कै संभाले सब नाहा जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया भग नानक सचे नाम बिनु क्या टिका क्या तग महला पहला लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेवान लख सुरतन संग्राम रण में छुटै प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिलै सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिलया सच पाया जिनकै हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास नानक लेखै एक गल होर हौं मैं चखणा चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेह किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरै एनस कहरै मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता पग उपे ताणा अपना किया कमाणा अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वै किश थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंदरा जाणै फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसां देसे ते नह केवल हौं मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरै मन भावदे दर सोहन कीर्त गावदे नानक करमा बाहरे दर ढो ना लैनी धामदे कमूल ना बुझने अपना अण हुंदा आप गणाए दे हौं ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जित जै ध्याए दे सलोक महला पहला कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार कूड सोयना कूड रूपा कूड पहननहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपया पार कूड मिया कूड बीबी खप होए खार कूड कूड़ै नेहो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखे ओ कूड़ डोबे पूर नानक वखाणा बेनती
तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला, सच ता पर जानिया जर दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरै तन करे अच्छा धोए। सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार, नाओ सुन मन रेसिया ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिया जा जुगत जाने जियो, तरत काया साध कै विच दे करता बीओ। सच ता पर जानिया जा सिख सची ले, दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच ता पर जानिया जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास। सच सब

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड़ बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै, पथ परवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी स्वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सब निशाला मारियां करता करे सोहे, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पथ पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ, नानक ता का दास है सुई निरंजन देओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस, जे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ, महला पहला कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ताय ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है, पढ़िया अतै ओमिया विचार गै विचारी है, मोहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझैता है, सत जोग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर गै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला साम कह से तंबर स्वामी सच मैं अच्छा साच रह, सबको सच समावै रिग कह रहया परपूर, राम नाम देवा मैसूर नाय लया प्राहित जाहे, नानक तौ मोख अंतर पाहे, जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया, पार जाद गोपी ले आया वृंदावन मैं रंग किया, काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया, नील बसर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत करनी सदा।

पौड़ी सतगुरु विटो वारिया जित मिले खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरलै किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवै आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवै पत मिठत निवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवै आप कहो पर कहो निवै ना कोए धर तारा जू तोलिए निवै सो गौरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा हे सीस निवाया क्या थी है जा हृदय सुदे जाहे। महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ बिपुखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोक निश्चो करमं कहो नानक नह चौ त्यावै विण सतगुर वाट ना पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राहे पीड़ै अगै जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसै खरा डरावना करे औगण पछोतावना। सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का है ता पांडे कत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया। महला पहला लख चोरिया लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहों कती है बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाईए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। महला पहला नाए मने पातू पजै साला ही सच सूत दरगे अंदर पाईए तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वड़तागे अवरा कत्तै लै पाड़ करे वी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडाण मन अंधा नाओ सुजान। पौड़ी साहेब होए दयाल किरपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे परवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावै सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगै पैंदा जाए सी। सलोक महला पहला गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिका तै जप माली धन मलेशा खाई अंतर पूजा पड़ै कतेबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लै जाए तरंदा। महला पहला मानस खाने करै निवाज छुरी वगायन तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरै नाद उना पे आवै ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करै आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई
नील वस्त्र पहर होवै प्रवान, मलेश तान ले पूजै पुराण, अपाखिया का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसै ना जाना, देखै चौका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै, एहो आना साडा फिटै, तन फिटै फेड़ करेन, मन जूठै चुली भरेन, कहो नानक सच त्याई है, सुच होवै ता सच पाई है, पौड़ी चित्तै अंदर सब को, वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड़ियाईयां आपे ही कर्म कराएंदा, वड हो वड़ा वड मेदनी, सिरे सिर तंद लाएंदा, नदरो पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पेख ना पाएंदा। सलोक महला पहला। जे मोहा का कर्म है, कर मोहे पितरी दे, अगे वत सियाणी है, पितरी चोर करे, वड़ी है हाथ दलाल के, मुस्पी एह करे, नानके अगे सो मिले, जे खट्टे का ले दे। महला पहला। ज्यों जोरू सिर नावनी, आवै वारो वार, जूठे जूठा मुख वसै, नित नित होए खुवार, सूचे एह ना आखी है, बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तुरे पलाने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़ियां, लाए बैठे करपा सारिया, चीज करन मन भावदे, हर बुजन नाही हारिया, कर फुरमाए सिखाया, वेख महलत मरण विसारिया, जरे आई जो बनहारिया। सलोक महला पहला। जेकर सूतक मनिए, सब तै सूतक होए, गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के, जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवै रसोए, नानक सूतके अपना उतरै, ज्ञानो तारे तोए। महला पहला। मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परत रिया पर तन रूप, कन्नी सूत कन पै, लाए तबारी खाहे, नानक हंसा आदमी, बदे जमपुर जाहे। महला पहला। सबो सूतक परम है, दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है, भाणे आवै जाए, खाना पीना पवित्र है, दितो न रिजक संबाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझिया, तिन्ना सूतक नाहे। पौड़ी। सतगुर वड्डा करसा लाही है, जिस विच वड्डियां वड्याईयां, सह मेले ता नदरी आईयां, जां तिस पाणा ता मन वसाईयां, कर हुकम मस्तक हथ धर, विचों मार कड्डियां बुरियाईयां, सह तुठै नौ निद पाईयां। सलोक महला पहला। पहला

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणै कूड़ो होवै नानक सिफत विगास।

नानक सेवक कांडी है, जे सेती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जापनी, हर ताके पारा वार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियां, एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हौ कैस्यो करी पुकार, नान करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। श्लोक महला पहला। आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाई है, एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन एक उपर रहन खड़े, इतना सवारे नानका जिन कौ नदर करे। महला दूजा। आपे साजे करे आप, जाई पे रखे आप, तिसवे जन तो पाए कह, देखे थाप ओ थाप, किसनो कहिए नानका, सब किसे आपे आप। पौड़ी। वडे किया वडे आईया, किस कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम, दे जिया रिजक संबाहे, साई कार कमावनी, तुर छोड़ी तन्ने पाए, नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए, सो करे जे तिसर जाए। सुध। एक ओंकार। सत नाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह भंगुर प्रसाद, राग यासा बाणी भगतां की, कबीर जियो, नाम देव जियो, रविदास जियो, आसा श्री कबीर जियो, गुरचरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कमन काज जग उपजै बिनसै, कहो मोहे समझाया, देव करो दया मोहे मार्ग लावो, जित पै बंधन टूटै, जन्म मरण दुख फेड़ कर्म सुख, जी जन्म ते छूटै रहाओ, माया फास बंद नहीं फारै, आर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीके चीनिया, इन बिद अप्यो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाणै, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिवलीणा, ज्यों प्रत बिंब बिंब कौ मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै तोतियां, तेहरे पायन तग, गली जिना जप मालियां, लोटे हख ने बग, ओए हर के संतना आखिया, बानारस के ठग, ऐसे संत नामो को पावै, डाला स्यो पेड़ा गटकावै रहाओ, बसन मांज चरावै उपर, काठी तोय जलावै, बसदा खोद करै दोए चूले, सारे मान सखावै, ओए पापी सदा फिर अपराधी, मुखों परस कहावै, सदा सदा फिर अभिमानी, सगल कुटम डुबावै, जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावै, कहो कबीर जे सतगुर भेटै, पुनरप जन्म ना आवै, आसा बाप दिलासा मेरो कीना, से सुखाली मुखे मृत दीना, तिस बाप कहो क्यों मनो विसारी, आगै गया ना बाजी हारी, मुई मेरी माई हौं खरा सुखाला, पैरो नहीं दगली लगे ना पाला रहाओ, बल तिस बापै जिन हौं जाया, पंचा ते मेरा संग चुकाया, पंच मार पावा तल दीने, हर सिमरन मेरा मन तन पीने, पिता हमारो वड गोसाई, तिस पिता पह हौं क्यों कर जाई, सतगुर मिले ता मार्ग दिखाया, जगत पिता मेरा मन पाया, हौ पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दुहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बुझिया, गुरप्रसाद मैं सबके सूझिया, आसा एकत पत्र पर उरकट कुरकट, एकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नगट दे रानी, नगटी को ठनगन बाडाडू, किना बबे की काटी तू रहाओ, सगल माहे नगटी का वासा, सगल मार अवहेरी, सगलियां की हों बहन भाणजी, जिन्हें बरी तिस्चेरी,
हमरो परता बड़ो बबेकी आपे संत कहावै ओह हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवै नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी कहो कबीर संतन की बैरनो तीन लोक की प्यारी आसा जोगी जति तपि सन्यासी बहुत तीर्थ भ्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तहर अंत तउ मरना ताते सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तउ मरना राज भोग अरशदर सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तउ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर एओ रामे जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावै पहर चोलना गधा नाचै पैसा भगत करावै राजा राम ककरिया बरे पकाए कने बुजन हारे खाए रहाओ बैठ सिंह कर पान लगावे कीस गलौरे लियावे कर कर मुसरी मंगल गावे कछुआ शंख बजावे बंस को पूत बियाहन चलिया सोए ने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए कहत कबीर सुनोरे संताओ कीटी पर्वत खाया कछुआ कह अंगार पे लोरो लूकी शब्द सुनाया आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी एको जिसै द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौ निद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सुई शब्द तागा मत काल पंच तत् की कर मृगाणी गुर कै मार्ग चल दया फाहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्नि जलावे तिसका पाओ ले हृदय अंतर चौह जुग ताड़ी लावे सब जो गतन राम नाम है जिसका पिंड पुराना कहो कबीर जे कृपा तारे दे सच्चा निशाना आसा हिंदू तुर्क कहां ते आए किन ए राह चलाई दिल में सोच विचार गवा दे पेस्त दो जुक किन पाई काजी तै कवन कते बखानी पड़त गुणत ऐसे सब मारे किनहू खबर ना जानी रहाओ सगत स्नेहो कर सुनत करिए मैं ना बदोगा पाई जौरे खुदाए मोह तुर्क करेगा अपन ही कट जाई सुन्नत किए तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए अर्ध शरीरी नार ना छोड़े ताते हिंदू ही रही है शाड़क तेव राम भज बौरे जुर्म करत है भारी कबीर है पगड़ी टेक राम की तुर्क रह पछहारी आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई रे बौरे तुह करी ना रखे कोई तू राम नाम जप सोई रहाओ कां की मात पिता कहो का को कवन पुरख की जोई कट फूटे को बात ना पूछे काडो काडो होई देहोरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए भाई लटछट काए त्रिया रोवे हंस अकेला जाई कहत कबीर।

दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मैं शब्द संजोई। हर का बिलोबना मन का बिचारा, गुरप्रसाद पावै अमृत धारा। कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। असा बाती सुकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक से धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगारियो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पर दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन कौ पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। पूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कष्ट अपना कियो। तीस बरस कष्ट देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो।

तुरंत ले गए हो मेरी राखत मुक्त फिरै, चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तब रे धर्म की आस करै, हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो, आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो, आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा, काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा, अहे रखवाद ना।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जनेहो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पय संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक पय दस बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यो भूल नहीं कहिए रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए सत संगत मिल बिबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपरे धोई गुरमत रामै नाम बसाई आश्चर रह ना कथू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त ना होई आसा पहला पूत पिछैरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंबो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन करे आई कहत कबीर जो इस पद बूजै राम रमत ते सबके सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखे।

चारा राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोट ते तीसो जाना कह कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससर की प्यारी जेठ के नाम डराओ रे सखी सहेली ननद गहेली देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ किन बिद रहन रहो रे सेजा रम तो नैन नहीं पेखो एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई माया सदमतवारी बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधया मैं राम रमत सुख पाया।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी। आसा ते पदा एक तुगा,

बहुरिया, आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मानो, सहजे रहा समाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पशानी। रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुरे पे ये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी। रहाओ कहो कबीर जब लहरी आई, बड़ी का सुहाग टरयो। लहरी संग पहिया मेरा, जेठी और तरयो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियां ने मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमऊआ लावा। रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियां ने मेरी जात गवाई। आसा रहो रहो री बहुरिया, कुंगट जिन काड अंत की बार लहगी ना याड। रहाओ कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तुहे तो जन लागे। कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साचै, हर गुण गाए कूद अर नाचै। कहत कबीर बहु तब जीतै, हर गुण गावत जन्म बतीतै। आसा करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हौ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। रहाओ जौ तन चीरा अंगना मोरो, पिंड पर तो प्रीत ना तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना हुई। आसा कोरी को कहूं मर्म ना जाना, सब जग आनत ना होता ना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिशाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावै, तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवै, ना ही राम एना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। रहाओ जल कै मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक नावै। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, तां सगली सैन तराई। दिन सनारैन बेद नहीं शास्त्र।

की एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

अनिले दूध रिदाईले खीरंग। ठाकर को नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर रंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना, झूठी माया देख कै भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुर उपदेश पहला, संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोखया साध जा मैं ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिहि संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलाए उपाए। हर अवदास दास उदास, तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जान है संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तानो रहाओ। संपत विपत पटल माया तानो, ता मैं मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤ।

देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एको अंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख ब्रह्मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया, ध्यान मान मन एक मये। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके अछली प्रपै जानिया। धनै तर पाया तरणी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद संग, नाम देव मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास ढुवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गनिया। एह बिद सुन कै जट रो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की ना, दयाल दमोदर बिबै ना जान सकोई। जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फ्री जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर।

हर सिमरत अनदयानंता रंग तमाशा पूर्ण आसा कबह ना व्यापै चिंता पवर तुम्हारा एहो मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो ज्यों बूंदे चात्रक मौला गुजरी महला पंजवा मता करे पछम कै ताई पूर्व ही ले जात खिन मैं था पो था पनहारा अपन हाथ मतात स्यान पो काहू कामनायात जो अनरूपयो ठाकर मेरे होय रही हो बात रहाओ देश कमावनो तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेव खवास सब त्यागे जंपर उठ सिदास होया नान मन हठ की दृढ़ता आपस कौ जा नात जो अनिंद निंद कर छोड़ो सोई फिर खात सहे सुबाए पय कृपाला ते जनकी काटी फास कहो नानक गुर पूरा भेटिया प्रवान ग्रस्त उदास गुजरी महला पंजवा नाम निधान जिन जन जपयो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता ए ब्याह ते हटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाओ जो किश कियो सोई पल माने ऐसी भगत कमानी मित्र सत्र सब एक समाने जो जुगत निशानी पूर्ण पूर रहो सर्व थाई आ नकत हूं जाता घट घट अंतर सर्व निरंतर रंग रवयो रंग राता पय कृपाल दयाल गोपाला ता निरपय कह कर आया काल कलेश मिटे खन भीतर नानक सहि समाया गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काट प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस घट रहाओ माया के संबंध सहन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल उच्चा ते संगमन वाइंत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मैं त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्ता गोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांछ सुख नानके हो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कै वासा ऊहा छोड़ तरन मैं आया चित्रसाल सुंदर बाग मंदिर संग न कछू जाया अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुर पूरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाओ इष्टमीत बंद पसुत पाई संग बंता रच हसया जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोना रूपा दामा पहाड़ी को ओह पहाड़ा मिलया होर सगल पयो बेराना हैवर गैवर रथ संभाहे गहो कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे नाम तान नाम सुख राजा नाम कुटम सहाई नाम संपत गुरु नानक कौ दी ओह मरे ना आवै जाई गुजरी महला पंजवा ते पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा त्रिसना जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया बिरसना आवै जाई हर जप माया बंधन टूटे पहे कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पहरो
ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੀਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛੈ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਰਾਰੋ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੋ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਰੋ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਮਿਆਰੋ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੂਜਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਪਤਾ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰ ਸਗਨ ਮੋਹਨ ਜਨ ਗਹਿ ਨਾ ਸਕਾਹੇ ਗਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ।

आप स्वामी अपन संग रता, नानक को प्रभु पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा, मता मसूर तो अवर सियानप, जन को कछु ना आयो, जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर त्यायो। प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो, करे प्रतपाल बार की न्याई, जन को लाड लड़ायो रहाओ। जप तप संजम कर्म धर्म, हर कीर्तन जन गायो, शरण पर्यो नानक ठाकर की अपैदान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा, दिन रातियां रादो प्यारो, निमख ना की जय टीला, संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हर ठीला। मोहन प्राण मान रंगीला, बास रहो ही रह कै संगे, पेख मोहयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरत मन होत आनंदा, उतरे मन हो जंगीला, मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ, नानक परै परीला। गुजरी महला पंजवा, मन जोगी शास्त्रक कहावत, सब कीने बस अपन ही, तीन देव अर कोड़ते तीसा, तिन की हैरत कछ ना रही। बलवंत व्याप रही सब मही, अवर न जान सको मरमा, गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना, सगल पवन लपटही, कहो नानक साते भागी, ओए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवा, दोए कर जोड़ करी बेनंती, ठाकरे अपना त्याया, हाथ दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया, ठाकर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता भाई सुत बंधप, तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ ना चल पोरा। ठाकर तुझ बिन आहे ना मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहा उहा तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा, आल जाल प्रम होत जावे, प्रभ सेती रंग लाई, मन को एह उपदेश दरड़ावे, सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति, नीकी ए ठहराई, मिल साधु हर जस गावे, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, खिन मैं थापो था पनहारा, कीमत जाय ना करी, राजा रंक करै खिन पीतर, नीचे जो तरी। त्याई है अपनो सदा हरी, सो जन देसा ताका कहां करिए, जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी, अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा, तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, चरण कमल रिदमाए सुमाए, तै परमा देरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम सुमाराओ, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, होर आस बिडानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पगचारो, एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो, उधर से आखी फोर।
ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਰ ਰੁਦਰ ਲੋਕ ਆਈ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਤੇ ਧਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਆਏ ਪਰਿਉ ਸਰਨਾਏ, ਗੁਹਜ ਪਾਪ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਰਜਾਰੈ, ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਓ ਹੈ ਬਤਾਏ ਰਹਾਓ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਰ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਨਰ ਰਹੀ ਕੰਠ ਉਰਜਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਗ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੈ, ਜਾ ਕੈ ਕੋਟ ਐਸੀ ਦਾਸ ਆਏ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪ ਜਸ ਮਿਟੈ ਹੋਵੇ ਜਗ ਕੀਰਤ, ਉਂਦਰ ਗੈ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਜਮਕੀ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਹੋਏ ਖਿਨ ਮੈਂ, ਸੁਖ ਅੰਧ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਐ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮੰਤਰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਓ। ਮੋਹੇ ਸਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਹਰ ਦਾਸੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਸਵੰਪਰ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਨਾ ਹੋਵਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਜ, ਸਗਲ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋ ਵਾਰਾ ਦੈ, ਤਾਹੂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਜਾਚ ਰਹਾਓ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ, ਤਿਸ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਨ ਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰੇ ਅਵਖਦ, ਉਤਰ ਗਯੋ ਸਭ ਤਾਪ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਆਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਕਰਤੈ,

आओ मात पिता सुतमीत भाई तिस बना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा सरण साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुरसन जोग गुजरी महला पंजवा आपना गुण सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास याराद हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराद काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला शेदा भेद स्वामी सरण ता की आओ चरण कमल आराद हृदय एक सिम लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई संका टूट दुखा नेरा पै बिनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोबिंद ते आए महान निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग मन तन पांचिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत सर्ब बिद भ्रम ते पुकारे कतै नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमण श्रवणया पार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरण काड जम दूत फास रहाओ सत्र दहनो हर नाम कहनो अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रकाश पय साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसे सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ
ਉਰਦ ਮੂਲ ਜਿਸ ਸਖਤ ਲਾਹਾ, ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਿਤ ਲਾਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਜਾਗੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਘਰ ਅੰਗਨ ਮੇਰਾ, ਪੁਹਪ ਪੱਤਰ ਤਤ ਡਾਲਾ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸੰਭੂ, ਛੋਡੋ ਬਹੁ ਜੰਜਾਲਾ। ਸੁਣ ਸਿਖਵੰਤੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ, ਛੋਡੋ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਥਿਅਲੇ, ਸੋ ਵੈ ਜੇ ਜਾਣੈ ਰੋਗੀ, ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮਨਾ ਧੰਦਾ ਨਾਹੀ, ਧੰਦੈ ਗਿਰਹੀ ਜੋਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜੀਅਲੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਮਨ ਤਤ ਅਵਗਤ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾਤ ਕਥਿਅਲੇ, ਸੇਤ ਬਰਨ ਸਭ ਦੂਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਮਦ ਤਾਸਰ ਸਾਧੰ, ਜਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ। ਮਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰ ਪਾਤਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨੈ ਨਾ ਗਰਮ, ਬਿਖ ਤਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰੈ ਸੁਮਾਰ, ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਭਯੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰਾਸਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਐ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਆਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰਹਾਓ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਧਰਨ ਗਗਨ ਤਹਿ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ। ਨਾ ਤਦ ਮਾਇਆ ਮਗ ਨਾ ਛਾਇਆ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਾ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ, ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਅੰਤਰ, ਏਕਾ ਨਦਰ ਸੋਤਰ ਭਵਨ ਸਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਤਿਨ ਕੀਆ,

आपन चाहे सो भगत कहिए अपना प्यार आप लाए आपे गावे आप सुनावे इस मन अंधे को मार्ग पाए अंधन नाचे सकत निवारे सेवकर नींद ना होई सकती कर जगत सूता नाचे टापे अवरो गावे मनमुख भगत ना होई सुर नर विरत पख करमी नाचे मुनजन ज्ञान बिचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध विचारी खंड ब्रह्मांडो त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुमारी जी जंत सबे ही नाचे नाचे खानी चारी जो तुद भावै से ही नाचे जिन गुरमुख शब्द लिव लाए से भगत से तत् ज्ञानी जिसको हुक्म मनाए एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागे बिन सेवा भगत ना होई जीवत मरै ता शब्द विचारे ता सच पावै कोई माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे को विरला तत् विचारी गुर प्रसादी सोई जन पाए जिन कौ कृपा तुम्हारी एकदम साचा विसरै सावेला बिरथा जाए साहे साहे सदा संभालिए आपे बक्से करे रजाए सही नाचे जो तुत पावे जे गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहे सुख पावे जिन को नजर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके जो बालक खीर आधारी आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कह बलिहारी मन रे हर कीर्त तरतारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई है जिन को कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मन सेवै अंदर जपत रह बनवारी शरणागत प्रहला जन आए तिनकी पै सवारी अलख निरंजन एको वरतै एका ज्योत मुरारी सब जाजक तू एको दाता मंगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम बाणी गावे कथ कथा नित न्यारी सफल जन्म भया तिनकेरा आप तरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुरमत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना भावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल धोवे ओह मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करता है हर करता है सब गल तारी हर एको सूत वरतै जुग अंतर सूत खिंचै एक अंकारी रस निरसन रस गावै हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर ना मांगो हर रस प्रीत प्यारी गुजरी महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राजन मैं तू राजा कहिए भूमन मैं भूमा ठाकर मैं ठकराई तेरी कोमर सिर कोमा पिता मेरो बड़ो तनी अगमा उसत कमन करी जय करते पेख रहे बिस्मा रहाओ सुखियन मैं सुखिया तू कहिए दातन सिर दाता तेजन मैं तेजवंशी कहिए रसियन मैं राता सूरन मैं सूरा तू कहिए भोगन मैं भोगी ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती जोगन मैं जोगी करतन मैं तू करता कही है आचारन मैं आचारी साहन मैं तू साचा साहा वापारन मैं वापारी दरबारन मैं तेरो दरबारा शरण पालन टीका लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए गाना सको सिका नामन मैं तेरो प्रभ नामा ज्ञानन मैं ज्ञानी जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता इशनानन मैं इशनानी सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा कर्मन सिर कर्मा आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा ज्यों बोलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कमन हमारी सा संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी गुजरी महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
नाथ नर हर दीन बंधव पतत पावन देव पै त्रास नास कृपाल गुणनिध सबर स्वामी सेव। हर गोपाल गुर गोबिंद चरण सरण दयाल केशव तार जग पव सिंध रहाओ। काम क्रोध हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार धरणी तार पत राख परमानंद। जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत शेद अहम बुद्ध करणा मैं चिंत मेट पुरख्यानंत सिमर समर्थ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहि समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिय रज साध। मोह मिथन दुरंत आसा बासना बेकार रख धर्म परम बिदार मंते उदर हर निरंकार। तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिना ना चीर खल मूड खल मुग्ध मूड कटाक श्री तर पय गुणमतीर। जीवन मुक्त जगदीश जप मानो तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परमहंस रीत। देत दर्शन सरवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार। गुजरी की वार महला तीजा सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। एहो जगत ममता मोवा जीवन की बिद नाहे गुर कै पाणे जो चलै ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए नानक नदरी मन वसै गुरमुख सही समाए। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदै मार दूजे पाए सुते कवे ना जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेतै शब्द नामी चार है एहो मनमुकाया चार हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया नानक जम मार करे खुवार। पौड़ी अपना आप उपायोन तदो होर ना कोई मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदहो आकाश ना पाताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई। ज्योतिष पावे तिवे करे तिस बिन अवर ना कोई श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए ओह अवाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो समय रह समाए अवर दूजा क्यों सेवी है जमै तै मर जाए। निहफल तिनका जीवया जे खसम ना जाए।

मनवस भेटै गुरसूरा। गुणवंती सालाहया सदा थिर निचल हरपूरा। सलोक महला तीजा। त्रिगत ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे। दुख हो मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे। तिन बूझना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे। अंत गए पछताए। गुरप्रसादी को नाम ते आए। तिस हमै विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवै लिखिया। सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊंदा कौल है। ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वरतदा। कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चेतना भिजई। मुख फीका आलाओ। ओए तर मरलाए ना रलन। ओना अंदर कूड़ सवाओ। नान करता बणत बनाई। मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी बिन बूजे वड्डा फेर पया। फिर आवै जाई। सतगुर की सेवा ना कीतिया। अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाई है। विचों आप गवाई। तृष्णा भुख विचों उतरै। सुख वसै मन आई। सदा सदा सालाही है हिरदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे अपना तिसनों पूजे सब कोए। सबना उपावा सिरे उपाओ है। हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसै। जप हिरदय सदा सुख होए। अमृत खाना अमृत पहनना। नानक नाम वडाई होए। महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन। हर पावै गुणी निदान। हर सुखदाता मन वसै। हो मैं जाए गुमान। नानक नदरी पाई है ता आंदन लागै ध्यान। पौड़ी सत संतोख सब सच है। गुरमुख पविता। अंदरों कपट विकार गया। मन से जे जिता। तह जोत प्रगास आनंद रस। अज्ञान गविता। अंदन हर के गुण रवै। गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है। एको हरमिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै सो ब्राह्मण कहियै। जे अंदन हर लिव लाए। सतगुर पुछै सच संजम कुमावै। हम मैं रोग तिस जाए। हर गुण गावै गुण संग्रह। ज्योति ज्योत मिलाए। इस जोग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी। जे हो मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलया सदा सुख पाईऐ। जे अंदन हर नाम ते आए। महला तीजा। अंतर कपट मनमुख अज्ञानी। रसना झूठ बोलाए। कपट कीतै हर पुरख ना पीजै। नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै। बिख माया मोह सुवाए। इतक माणै सदा दुख पावै। जमै मरै फिर आवै जाए। सहिसा मूल न चुकई। विच विष्टा पचै पचाए। जिसनों कृपा करे मेरा स्वामी। तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम ते आवै हर नामो गावै। हर नाम वंत छिड़ाए। पौड़ी जिन्ना हुक्म नायो न ते पूरे संसार। साहेब सेव ने अपना पूरा शब्द विचार। हर की सेवा चकरी सच्चे शब्द प्यार। हर का महलत नी पाया जिन हमें विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरतार। सलोक महला तीजा। गुरमुख ध्यान सहज तुन उपजै। सच नाम चित लाया गुरमुख अंदन रह रंग राता। हर का नाम मन पाया गुरमुख हर सेवै। गुरमुख हर वेखै गुरमुख हर बोलै। गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवै। तिमर अज्ञाना देर चुकाया। जिसनो कर्म होवै तुरपूरा। तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा।
ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈ ਐ ਵਿਸ਼ਟਾਸ ਦਾ ਖੁਆਰ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਭਰੇ ਜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੀ ਉਪਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਹਿ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਪਿਆਏ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਹਰ ਜੀ।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंद नाम त्याया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हों मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नामों दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सिरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा, हौं मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जालीए, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा, एहो मन केतड़िया, जुग भरमिया, थिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलो पाए, जा हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरै न जाए। पौड़ी, काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, जो तिस पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाह वाह सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह बाणी सच है, सच मिला वाह होए, नानक वाह वाह करत्या प्रपाया, करम प्राप्त होए। महला तीजा, वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्र मिलया आई, वड भागिया वाह वाह मोह कढ़ाई, वाह वाह करै सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाह करम प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई। पौड़ी, बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ को सत अभमानी, परम पूले नजर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाह करत्या हर स्यों लिवलाए, वाह वाह करमी बोलै बोलाए, वाह वाह करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाह सत्र जाए। महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है, गुरमुख लद्दी पाल, वाह वाह शब्दे उचरै, वाह वाह हिरदय नाल, वाह वाह करत्या हर पाया, सहजे गुरमुख पाल, सेवड़ भागी नानका, हर हर दै समाल। पौड़ी,
ਇਹ ਮਨਾ ਅਤ ਲੋਭੀਆ ਨਿਤ ਲੋਭੇ ਰਾਤਾ ਮਾਇਆ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਫਿਰਾਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਉ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਖਾਤਾ ਰਸਨਾ ਰਸਨਾ ਚੱਖਿਓ ਫੀਕਾ ਬੋਲਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜੰਤਰ ਬਤਾਤਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਮਤ ਧੀਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਕੋ ਕਰ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਬਿਖ ਖਾਏ ਓਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਭਾਵਈ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੈ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਬਨੀਜੈ ਹਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਪੀਜੈ ਹਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰ ਲਾਹਾ ਨਿਤ ਲੀਜੈ ਹਰ ਕੈ ਤਖਤ ਬਹਾਲੀਐ ਨਿਜ ਕਰ ਸਦਾ ਵਸੀਜੈ ਹਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਤਿੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੀਜੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੇ ਜਨ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜਿਨ ਕੋ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਹਰ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰਾ ਮੁਖੋਂ ਪੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋ ਕਰਹਿ ਹਉ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਉ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ

तो कड़ी मोहत न विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम के ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराद बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवा किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटे।

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परमगढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खोट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच, ते आए दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमण, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपिए। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिसकै वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार, राख ले हो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांदिया खांदिया मोह कठा, पैनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हो

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै तां से सजाई, किसह पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ तां ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछै पार मलो। परम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाश है कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भुयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं कीन्या परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंता मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन उपाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडलो कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पावभूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्र

पित गली, हर के संत बतावो मार्गो, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर, ए चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावलो, तिस कारण हर ढोली है, कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

ना खाते रंग तुम्हारे लाल पए है राम नाम रस माते महा किलबख कोट दोख रोगा प्रभ दृष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते देव गंधारी पंजवा सो प्रभ जत कत पेख्यो नैनी सुखदाई जियन को दाता अमृत जा की बैनी रहाओ अज्ञाना देरा संति काटिया जी दान गुर दैनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी कर्म धर्म किश उपजना आयो नहीं उपजी निर्मल करनी छाड़ सियाणप संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के फाहा रहाओ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पाया तिना प्राप्त हो निदाना जिनके कर्म लिखा सेवड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम विसाहा देव गंधारी पंजवा मन कह अंकार अफारा दुर्गंध पवित्र अपावन पीतर जोधी सहसो शारा रहाओ जिन किया ते सिमर प्राणी जियो प्राण जन तारा तिसै त्याग अवर लपटावै मरजन मैं मुद गवारा अंध कोंग गोंग पिंगल मतहीना प्रभ राखो रखनहारा करन करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी पंजवा सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै सिमरत आए गाए गुण गोबिंद दिन रैन सांझ सवेरै रहाओ उधर देह दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरै करी ना मोहत ना चसा बिलंबो काल नितै नित हेरै अंध बिलाते काडो करते क्या नाही करते रह नाम आधार दीजै नानक कहो आनंद सुख घनेरै शके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बाध्यो रहाओ कर कृपा

पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा, अमोल पदार्थ ला दियो, बलिहार है नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा दियो। देव गंधारी पंजवा, माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फलता को, पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह, आन दृष्टि आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा, चंचल सुपने ही उर जायो इतनी ना बुझे कबहू, चलना बिगल पयो संग मायो, रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया, बिखिया एक यो पायो, लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो करी कृपा, पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा, सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मन सुधारन, ए आसर मोए तरना, रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन, यह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवे परगासा,

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जा रहो सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में ओ सुखता रहो। गुण गावे ठाकरे अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो देवगदारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान तादर रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीनानाथ प्राण पत पूर्ण पावजल उदर नहारा आद जुगाद भगत जन सेवक ताकि बिखया धारा तिन जन की धूर बांछ नित नानक परम।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता। अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी।

आओ दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवगंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो रख नहारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंती वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावा तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लइया राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाए सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कतहूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन याचै प्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछै रहाओ किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांचै जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुराछै देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहु मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पारे उतारियो दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ
कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन पव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवां कर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा आना

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको ओंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रह निड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रे रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे नै दुख पावे प्रभ ते आवे तन ते वट पागिया सुख सहज सोवे किल बिख खोवे नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाणे बिनवंत नानक मने छपाई हर मिले पुरख चराणे तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा मानता नु रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद पत उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार किरपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावे संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावे खसम पावे हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर ना मुआ कल कले साधुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रैण त्रिपावन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्रभ प्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाई लीजिए देहे नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पेखे जीजिए समर्थ पूर्ण।

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम तप्त नाकत बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमें सरोवर पियो अमें सरोवरो पियो, हर हर नाम राम संतै संग मिले, जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जम गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा धर्म पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, इक सहर के नाम बाजो आनका सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोई करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तप तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला। शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा, बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सद ही गुण गोपाल नित गाई है, भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुड़ कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवां शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कढ लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। आगाध बोधया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक शरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जां ते विछड़िया तिन्हां मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निध गाया। बिहागड़ा महला पंजवां संत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले, बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तें जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतियां पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर सेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है, अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी तू।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए।

लोभ अंतर सबला, नित धंधा करत विहाए, चरण कर देखत सुन थके, देह मुके नेड़ आए, सच्चा नाम न लगो मीठा, जित नाम नाम निद पाए, जीवत मरे मरे फुन जीवे, तामो खंतर पाए, तुर काम ना पायो प्राणी, विण कर्मा क्या पाए, गुर का शब्द समाल तू मूड़े, गातमा तू शब्दे पाए, नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए, पौड़ी जिसद चित वसिया मेरा स्वामी, तिसनो क्यों अंदेसा, किसे गल्ले दा लोड़ी है, हर सुखदाता सबना गल्ला का, तिसनो त्याय दया किम निमख घड़ी मोह मूड़ी है, जिन हर त्याया तिसनो सर्व कल्याण होए, नित संत जना की संगत, जाए बई है मोह जोड़ी है, सब दुख भुख रोग गए।

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदो क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करै सोथिया। श्लोक महला तीजा, गुरमुख प्रभु।

आपे सबकट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप बेको आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सालाहे नर जय तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कुमाहे बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही मर जमै आवै जाहे बिन सतगुर सेवे फिका बोलना नाम ना वसै मन आए नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी हर नामे लगे प्यार नानक जन्म सवार ने अपना कुल का करन उधार। पौड़ी आपे चाड़ साल आप है पादा आपे चाटड़े पण कौवाने आपे मिता आपे पिता माता है आपे आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे एक थै आपे करे आने एक ना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई से जन सच्ची दरगे जाने। श्लोक मर्दाना पहला कल कल वाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी।

चरना चेतई के करे गो अग्गै जाए, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथे कमावे सो मिले, अग्गै पाए जाए महला तीजा। तोर खसमै का हुकुम पया, बिन सतगुर चेतिया न जाए। सतगुर मिलया अंतर रव रहया, सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा सुमालदा, दम न बिरथा जाए। जन मरण का पहो गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वरतदा, आपे कथै ज्ञाना। कौड़ा किसे न लगई, सब नाही पहना। उस्तत बरना सकी सत कुरबाना, सलोक महला पहला। कली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा, ती जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार, महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुटी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंधे अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे, तुम कहां तरन हार पौड़ी। सब केहो तेरे वस है, तुम सच्चा साहो। भगत रते रंग एक कै, पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर, राज राज जन खाहो। सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो। संत प्यारे पार ब्रह्म, नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा। सब किश हुक्मे आमदा, सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाने, अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनो कृपा करे रजाए। महला तीजा, सो जोगी जुग सो पाए। जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए, तिस जोगी की नगरी सब को वसै। पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस कट प्रगट होए।

जिन जेवा रस न चखियो सा जेवा जल जाओ, अनरस सादे लग रही दुख पाया दूजे पाए। सबना नदर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे परजवे गोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर कै शब्द मिलाए। मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिलै सच मिलै सच नाम समाया। आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए। वढांस महला तीजा। सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सहज सुभाए, सदा प्रदावे अपना विचों आप गवाए। मेरे मन तू हर हर नाम ते आए, सतगुर मोको हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागणी खरिया बिल लांदिया तिन्ना महल ना पाए, दूजे पाए क्रूपी दुख पावै आगे जाए। गुणवंती नित गुण रवै हृदय नाम वसाए, औगुणवंती कामणी दुख लागै बिल लाए। सबना का पतार एक है स्वामी, कहना किशु ना जाए। नानक आपे वेख कीतियां नामे लयन लाए। वढांस महला तीजा। अमृत नाम सद मीठा लागा, गुर शब्दी साध आया, सच्ची बाणी सही समाणी हर जियो मन वसाया। हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुरु हर नाम।

कार्य अपने तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लगत रह संसारा, गुरमुख ज्ञान रते जुग अंतर, चूकै मोह गुबारा, सतगुर सेवा ते निस्तारा, गुरमुख तरह संसारा, साचै नर ते बैरागी, पाए मोख द्वारा, एको सच वरतै सब अंतर, सबना करे प्रतपाला, नानक इक्स बिन मैं अवर ना जाना, सबना दीवान दयाला। अवढांस महला तीजा। गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान, गुरमुख साचै लगै ध्यान, गुरमुख मन मेरे नाम संभाल, सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ। गुरमुख जात पात सच सोए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द सच करनी सार, गुरमुख नानक परवार साधार। वढ़ंस महला तीजा। रसना हर साध लगी सह सुभाए, मन तृप्तिया हर नाम ते आए, सदा सुख साचै शब्द विचारी, अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ। अखी संतोखिया एक लिव लाए, मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए, देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए, नाम परमल हृदय रया समाए, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग। वढ़ंस महला तीजा। पूरे गुरते नाम पाया जाए, सच्चा शब्द सच समाए, ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ। गुर कै शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसै मन आए, परमे पूला फिर संसार, मर जन्म जम करे खुवार, नानक सेवड पागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन वसाया।

तू गुर का शब्द कमाए। हुक्म मन्ने ता हर मिलै, ता विचों हमें जाए रहाओ। हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है। हमें विच बुझ न सके कोए, हमें विच भगत ना हो वही। हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिलिया हमें गई, ता सच वसया मन आए। सच कमावै सच रहै, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुर पूरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण

नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी। जो पिर पावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी ऊठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा। वडहंस महला पंजवा, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ। जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै ता लागै हावा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ तुझे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मंत्र आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ांस।

सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कहिए सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहण जत जय कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब पाईया ने आप आपे नजर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब यो पाई है आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जामना एक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावे राज तेरा कबो ना जावे राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सही समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता साच

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बुझावै दुख भूख संसार किए सत सह चुकावै। बिनवंत नानक जाए सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिवर लिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाण है कामण वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कह पाए हर वार रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रलियाला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिए लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रावी जय अंधन नाम वखाण गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप पछाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी है हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम गुरमती मन निज कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी साचे शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा सुमाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचे शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुति मनमुख जोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आ अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नगर निहाल।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे।

प्यारे राम हर नामो हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नामा दारू राम हर हर नाम मेरा प्राण सखाई तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे हम वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया ना जाई कर थाके सब चितराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर न कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई वडहंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञाना देर बिनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे जिन कौ हर प्रभ कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रह न जाई राम हर नाम देवे मेरा अंत सिखाई राम हर हर नाम मेरा अंत सिखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महल्ला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम। साबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पै शरीरा। अंतन सह समाद हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम, मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर, कृपा लेहु उबारे राम। हम पापी

तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे हे रामो पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जन आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करता है हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाण नाम जाण हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देहे कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माण रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

गुण अवगुण मेरा किस ना विचारिया, बख्शली आखिर माही। नौनित पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं वार कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सलोक क्या सुने दे कूड़, वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनी अरते प्रवान, जो सुने दे सच धनी संत। तिन कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया, राम से सहे सुहेले जिन हर हर रसना भणिया। राम से सहे सुहेले गुणे अमोले, जगत उदारने आए, पै बोहित सागर प्रभ चरणा, केते पार लंगाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकुर, तिनका लेखा ना गणिया, कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझे मूकनी, नानक से अखड़िया बयान, जिनी डसन दो मां पिरी संत। जिनी हर प्रभ डिठा तिन कुर्बाने, राम से साची दरगह पाने। राम ठाकुर माने से प्रधाने, हर से ती रंग राते, हर रस अगाए सही समाए, कट कट रमैया जाते। सही सज्जन संत से सुखिए, ठाकुर अपने पाने, कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सतगुरु बाणे। सलोक देह अंधारी अंध, सुनी ना विहुनिया, नानक सफल जनम, जय कट उठा सच धनी संत। तिन खन्नी है वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा, राम जन चाखिया गाने, हर हर अमृत मीठा। राम हर मने मीठा प्रभु तूठा, अम्यो उठा सुख पए, दुख नाश परम विनाश तंते, जप जगदीश ईसे जय जय। मोह रहत बेकार थाके, पंच ते संग तूटा, कहो नानक तन खनिया मन्या, जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। सलोक जो लोड़ी दे राम, सेवक से ही कंडिया, नानक जाने सत साई संत ना बाहरा। संत मिल जल जलै खटाना, राम संग ज्योति ज्योत मिलाना। राम समाए पूर्ण पुरख करते, आपे आपे जानी है, तह सुन सह समाध लागी, एक एक वखाणी है। आप भुगता आप मुगता, आपे आप वखाना, नानक भ्रम पै गुण बिनासे, मिल जल जलै खटाना। वडहंस महला पंजवां, प्रभ करण कारण समरथा। राम रख जगत सगल दे हथा, राम समरथ सरना जोग स्वामी, कृपा निध सुखदाता, हाँ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता। वर्ण चिहन ना जाए लखिया, कथन ते अकथा, बिनवंत नानक सुनो बिनती, प्रभ करण कारण समरथा। एह जी तेरे तू करता, राम प्रभ दुख दर्द भ्रम हरता। राम भ्रम दुख दर्द निवार, खिन मैं रख ले हो दीन दयाला, मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो सरण आवै गुण निधान पावै, सो बहुड़ जन्म ना मरता, बिनवंत नानक दास तेरा, सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर त्याई है राम, मन इच्छा अड़ा फल पाई है। राम मन इच्छ पाई है प्रभ त्याई है, मिटे जम के त्रासा, गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण आसा। तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाई है, बिरवंत नानक दिन सरैणी, सदा हर हर त्याई है। दर वाजे अनहद वाजे राम, कट कट हर गोविंद गाजे। राम गोविंद गाजे सदा बिराजे, अगमा गोचरी उच्चा, गुण बेअंत किश कहण ना जाई, कोय ना सकै पहुचा। आप यो पाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुखनाम भगती, दर वजे अनहद वाजे। राग वढ़ंस महला पहला, कर पंजवा अलाहणिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद। तन सरंदा सच्चा पातशाह,
ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀ ਆੜਾ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਨੀ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂਦਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਐਥੇ ਤੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾ ਕਾਹੇ ਗਰਬ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਤਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਆਗੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮੂਲੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਆ ਵਿਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਆ ਲੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖਿਆ ਪਾਰੋ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਟਾਹੇ ਟਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਾਲੇ ਵੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਗਾਫਲ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਵੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੇ ਸੂਜੈ ਨਾਹੀ ਉਹ ਤਨ ਏ ਵੈ ਖੋਵੈ ਐਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂੜ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹੀ ਲੀਆ ਹੋਵਾ ਤਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਹਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਭੇਟੈ ਸਿਉਂ ਜਾਵੋ

मर जाना है। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेख साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखणी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लख्या पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़े नाम विसारिया, बूढ़ड़े क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिख लद्या, अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मेलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तोड़न हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये, महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलियो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानिए, फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कार कार कंत महेलिया, रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हाँ रे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सातन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीतना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो, दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कह वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी ना ले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांदी, कर हुक्म छड़ावन हारो, आज कल कर दिया काल बया पै, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ।

रोवै कंत समाल सदा गुण सार ना पिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड मुठी कूड़ आरे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप्यो पायो न।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करै प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन पाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाणै मनमुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिसमाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किल बिख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा सबदे हम मैं खोई। सोरठ महला।

आपे कीमत पाए दा प्यारा, आपे करे सो होए, आपे अलख ना लखिया प्यारा, आप लखा वै सोए। आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिजे वड्यावर ना कोए, सब कट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए। नानक गुप्त वर्त दा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सोरठ महला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थापो थापै, आपे वेख वेखदा प्यारा, कर चोज वेखै प्रभ आपै, आपे वंतन सप्त है प्यारा, आपे गुरमुख जापै, जप मन हर हर नाम रस त्रापै, अमृत नाम महारस मीठा, गुरसबदी चख जापै रहाओ। आपे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा, आप तरह प्रभ आपै, आपे जल बताईंदा प्यारा, सब जग मछली हर आपै, आप अपुल ना भुलई प्यारा, अवर ना दूजा जापै, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप वजाए आपै, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तपता पै, आपे सतगुर आप है चेला, उपदेश करै प्रभ आपै, आपे नाउ जपाएं दा प्यारा, आपे ही जप जापै, आपे अमृताप है प्यारा, आपे ही रस आपै, आपे आप सलाहां दा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापै, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तोलाया, आपे साहो आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारै, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर त्याय सुख पाया, हर हर नाम निदान है प्यारा, गुरपूरै मीठा लाया रहाओ। आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुकुमर दा प्यारा, जल माटी बंद रखाया, आपे ही पाओ पाएं दा प्यारा, बन बकरी सीहो हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया, आपे ही आप वरत दा प्यारा, पै अग्न ना सकै जलाया, आपे मर जीवाएं दा प्यारा, सह लैंदे सब लवाया, आपे तान दीवान है प्यारा, आपे कारै लाया, ज्यो आप चलाए त्यों चली है प्यारे, ज्यो हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह वजाया, सोरठ महला चौथा, आपे सृष्टि पाएंदा प्यारा, कर सूरज चंद चाणान, आपने ताणिया तान है प्यारा, आपने माणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सूड सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत

कोट परादा शादे ओहे मानो कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरण आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असनेही रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तून बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संगया कर देही कीनी। जल कूकर पस में ही होए आमरो ग्रह मैं बैठा करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस ध्यावो दिन रह नेही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेट्यो वड भागी मनै भया परगासा कोय ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारा रहाओ। अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वडे आई अचर जसोबा कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेखे।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हम मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व

कोट प्राध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

ओड़क को ना पहुँचे मेरे मन साध सरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रही फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओह जो भरम भुलावा कही अत तिन मैं उर्जो सगल संसार।

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां कर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी को बल जाई एह मन तेरा पाई रहाओ पाव मलोवा मल मल तोवा एह मन तै कु देसा सुन मीता हो तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना की जय शरण परी जय करे सो पला मनाई है सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय इं दर्शन हर जियो पाई है भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कहे हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा पर पूरी रे पेखत सुन तो सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनाओ क्या जाना होए कैसो रे करो बेंती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरिया रे गुरु नानक जन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना भरिया रे सोरठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया सह सैन यार सुख मन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज पया जे ठाकर कहो सुनते अगाध बोध सोरदय गुरदया रहाओ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करै बेनती राग ठाकर ते हम तेरी सरनाया जह भंडार गोबिंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरदीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक सौपे फिर लेखा मूल नान लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण त्रखाई हर आराधे अरोग अनदाई जिसनों विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जिह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरणे जिह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरणे जिह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जिह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर दे सारहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाचे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरा सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूडो गूडो गहर गंभीरो, ऊंचो अगमिया पारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओढ़ सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हमलाह खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवां, जे

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन ना जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाएं

अपने सदगुर के मन पाने, उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द भ्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन शाड कौडी संग लागे, जाते कछु ना पाई है, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदाते आई है। सिमरव हर हर नाम परानी, बिनसै काची देह अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा यार सुपन मनोरथ, ताकि कछ ना वडाई, राम भजन बिन कामना आवस, संग न काहूं जाई। हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा, जी को काम न कीना, तावत तावत नह त्रिपतासिया, राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो, असंख खते कर फेरे, नानक की प्रपाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूर्ण अबनासी, काम क्रोध बिख जारे, महाबिखमो यगन को सागर, साधु संग उदारे, पूरे गुर मेट्यो परमान देरा, पज प्रेम भगत प्रभ नेरा, रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया, मंतन रहे अगाई, जत कत पूर रहे हो परमेश्वर, कत आवै कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता, जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, ताकि पूर्ण काला। काल कलेस मिटे दुख सगले, काटी जमकी फासा, कहो नानक प्रभ कृपा धारी, मंतन पय बिगासा। सोरठ महला पंजवा, करण करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी। मेरा गुरु होवा आप सहाई, सुख सहज आनंद मंगल रस, अचरज पई बढ़ाई, रहाओ गुर की शरण पए पै नासे, साची दरगह माने, गुण गावत आराधना हर आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी, सदबलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूर्ण पै सवारी। गोसट ज्ञान नाम सुन उदरे, जिन जिन दर्शन पाया, पयो कृपाल नानक प्रभ अपना, आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवा, प्रभ की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सदगुर त्याया, प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता, रहाओ सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी, कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अबनासी। ताँ को बिघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल बसेर दे अंतर, अमृत हर रस चाखे। कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ताँ कै बलिहार है, जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार ना जाने, जियो पिंड साज जन रचिया, बल अपनो कर मन है। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी, जो कुछ करे सोई सोई जाने, रह न कछु ऐशानी, रहाओ जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ, उपजे अनक बेकारा, बहुत जोन भरमत दुख पाया, हम मैं बंधन के पारा। दे के

जो मांगों सोई सोई पावाओं अपने खसम भरोसा, कहो नानक गुर पूरा भेटियो मिटियो सगल्यां देसा। सोरठ महला पंजवां, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समर्थ स्वामी पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, होवा पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवां, हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग माण। साचा साहेब साध मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरा, हुई सर्व कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवां, दुरत गवाया।

होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरणो सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श लए सब सच्चा साहेब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला।

सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होवा धार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जनकी लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखे पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आनदिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास कौ कंठ लाए राखे जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो ने सहसा चुकाया सिकदारो ने पतियाया उमरावो आगे चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई।

तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चितराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ता की कीमत कहन न जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन यो महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरा साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुरपूरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर तिहाई आन दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडपागी पाए कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी चितलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सा पय पवित्रा सदगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पहे दयाला जप आनंद रहो।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया। होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी। हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ। हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूर्ण होई आसा। जै पेखा तै सोई, हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा। ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरन सचे की ताकी। परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखन मैं उपजे, मन हो

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाई है साध संग मिल त्याई है मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीव है परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्ब गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो।

कहो नानक कहो मैं पीत गुर खोई, तौ दयार बीठ लो पायो। सब रहो अंदेसरो मायो, जो चाहत सो गुरु मिलायो। सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा, सोरठ महला पंजवा, गई बहोड़ बंदी छोड़। निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना, धर्म ना जाना, लोभी माया तारी। नाम पर्यो भगत गोविंद का।

जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगै मार्ग पावै, हर अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आग सुनाई है। कहणै कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है। अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है, होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती, हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरे दियो उपदेसा, जब पौजल पारो तारा रहाओ। तू है मंत्री सुने प्रभ तू है सब किश करने हारा, तू आपे दाता आपे भुगता क्या यो जंत विचारा। क्या गुण तेरे आख वखाणी कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई। तार अनुग्रहो आप प्रभ स्वामी पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी बांछो संता तूरी। सोरठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारे प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई। सगल मनोरथ कीने करते ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया पिछे लग चली माया। तोट ना कतहू आवै मेरे पूरे सतगुर भावै, सिमर सिमर दयाला सब जी पै कृपाला। जय जयकार गोसाई जिन पूरी बणत बनाई।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण साह सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस ना जाई।

ऐसे आगै को ना टिकै बेकारी, गुरपुरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उधरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, एह पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवां, गुरपुरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, गुरपुरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावै पाई, ओ सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा आरा दे, कारज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे। संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ। गुरपुरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाव, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै। अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ। ज्यो कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यो माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै। गुरपुरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया। संतो साचे की वड़ियाई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाण, दास बाणी ब्रह्म वखाण। नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपुरै लै तारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपुरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया। सोरठ महला पंजवां, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपुरे की वड़ियाई, ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावै, जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवां, आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वड़ियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवां, नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुरपुरै पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को समत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ पहरा।

सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सुवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पहारे उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपा निद पूर्ण खसम हमारे रहाओ। आओ बैठ आदर सब थाई ऊन नकत हूं बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ। कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोलै मुख पसारे मीत। आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भजल जाते अवसर बीत। सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण कासी उदरी ताको जस उतारो रहाओ। अटल भयो त्रू जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा। अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ता कै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सक्त रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे। निस्बासर बिख्यन कौ तावत केह बिद रुकौताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै। पर धन पर धारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा हरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगते अपने सुख लागे ओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यो लागे। जब ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे। कहो

मोह अपमाना हरक सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरै विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत नेरै कर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर पागी एह बिद को व्योहार बनयो है जास्यो नेहो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदिया चौथकी एको अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो बड़े मसान ना जाई तृष्णा राजना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई

मेरे प्रभ सालाहन से पले प्यारे शब्द रते रंग होए तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत प्रवाना साचका प्यारे नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण गुरबिन हुक्म ना बूझिया प्यारे साचे साचा तान हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उधर मजार हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै पार गुरमुख दर गै जानिए प्यारे चले कारज सार हुक्मे अंदर आया प्यारे हुक्मे जद हो जाए हुक्मे बन चलाइए प्यारे मनमुख लह सजाए हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगह पैंदा जाए हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मे होमै दोए हुक्मे पवै पवाइए प्यारे अवगण मुठी रोए हुक्म सियापै सहाका प्यारे सच मिलै वड्याई होए आखण औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच ना जिन्नी सो सालाहया प्यारे हौतन बलिहार जाओ नाव मिलै संतोखियां प्यारे नदरी मेल मिलाओ काया कागद जेखिए प्यारे मन मसवाणी तार ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार तन लेखारी नानका प्यारे साच लिखे उर तार सोरठ महला पहला पहला दो तुकी तू गुणदाताओ निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम अपराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हरनाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगता नु जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरे दसेदो सब भगता चरनी लागी, गुर कै सह सुबाई। मन मुखा नु प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हृदय शब्द ना पेदेओ, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का इस्वार नहारा। ओना की रीस करे सो विगुच्चै, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे के

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस सियाण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस न जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खटकर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मनो कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया। श्लोक महला तीजा, हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा, सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान, कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिया, जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया। श्लोक महला तीजा, पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेते हो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सत्या शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मनमुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगै खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी। जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी। गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरन ज्यों सिर दे, मन तन आगै रख कै उबी सेव करे। इउं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करे। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रवान, नानक कोले उधार है अपना अंदर गै पावै मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु में लाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कर लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुरमिता पुता पाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। श्लोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंदले, अवरे कर्म कमाए जमदर बदे मारी है फिर विष्टा माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेवै अपना सेजन सच्चे परवान, हर कै नाए समाय रहे चुका आवन जान। पौड़ी तन संपै माया संचिय अंते दुखदाई, कर मंदर महल सवारी है के साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कित काम ना आई, जन लाभ उचित हर नाम से ओवंत होए सिखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन कर्म नाव ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए, नानक नजर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है, एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच ओ सटी है एक पी फिर हसन पाहे। नानकेव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैदा माया सब पिवित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते, तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साधु संत चढ़ जाते, तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनके पोते पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाते। श्लोक महला तीजा नानक नाम कुथियां हलत पलत सब जाए, जप तप संजम सब हिर लया मुठी दूजे पाए। जमदर बदे मारिय बहुती मिले सजाए। महला तीजा संता नाल वैर कमावन दे दुष्टा नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जमै वारो वार।

वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तन दीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आ बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिले ओ जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत सचेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज न जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, औरन पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जब सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लही है, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कभी

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तोलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी, भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरे नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी देहो, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही ऐसी बेदन उपज खरी पई वा का औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कह ना जाई जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो पीखन दोए नैन संतोखे जै देखा तै सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार दुख विसारन सेवया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दातार रहाओ अंदन साहेब सेविया अंत छिडाए सोए सुन सुन मेरी कमनी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा सद कुर्बान जाओ रहाओ सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए। ताकि सेवा सो करे जा को नदर करे तुदवाज प्यारे केव रहा सा वड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए। जिसे आग्या प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहब अपना अवर न जाचों कोए। नानक तांका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहेब तेरे नाम विटाओ बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तनासरी महला पहला हम आदमी हां एक दमी मोहलत मोहत ना जाना नानक बिन मैत सरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना रहाओ सास मां सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड़ै गहना। नानक बिन मैं सो किश पाई है पुरब लिखे का लहना नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिया किश कही है पाल रहे हम रहन ना पाया जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तपह आओ जियड़ा बिललाए। सिरज सवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म ना पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए लोक पतिने ना पत होए ता पत रहे राखे जा सोए। जैं देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे कीते क्या होए जिसनों बख्से साचा सोए। हुण उठ चलना मोहत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवै रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करै अंतर की दुबदा अंतर मरै। गुर प्रसादी पाया जाए हर सो चित लागै फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवै प्रगास ताते बिख्या मैं रह उदास। सतगुर की ऐसी वड़ियाई पुत्र कलत्र विचे गत पाई ऐसी सेवक सेवा करै।
ਜਿਸਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਆਗੈ ਧਰੈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ ਬਾ

बहुते फेर पए किरपन कहो अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन देहो अपना आपी ऐसी बस करी जय पंत नानक परमपट खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी हामी ऊपर कृपा कर स्वामी रख संग तुम जो प्यारी हार गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे विख मोरचा लग संगत साध सवारी जो कंचर बै संतर तायो मल काटी करते उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हरे और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख्या पारी जन कहो कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमति अंतर जागी हर कह नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निख कीरे तुम वट पुरख वडागी तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल सब के लिख पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगै प्रभ।

सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली गुरसख मी चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानाओ हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सके अंत माती तू पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते काकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर तुम आपे आप आपा की जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दसन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दोपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर धार विचार मुरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने अदृष्टा गोचर परम्पर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम ते आई हर दर गै पावै फिर जन्म ना आवै हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी नानक हर पय है सिखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ।

हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी, जन नान की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनाश्री महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत, तीस कोट मुन जानो, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को बिरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम, हर जसिउ तुम काम, जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी, हम तिनकै सद बलिहारै जाऊं रहाओ। शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हाँ पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनाश्री महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाएं पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी, बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनाश्री महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जां कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े, ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। जप मानो सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना, जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनाश्री महला चौथा।

सहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जियां के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बड़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग

पहि प्राप्त वस्त्या गोचर राम नाम रंग लागा। चिंत्या चिंता सोचा सोचा सोग लो मोथाका। हम

कहो नानको जिन जमते काढे तिस गुर कै कुरबाणी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर कीओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूझी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक इंद नहीं त्रप बिनहर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन कर

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन ना साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आय चिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

हो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक तृप्त अगाई। तना श्री महला पंजवा जिन कीने वस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याद तब हूटो रहाओ। न सुनिए न मुखते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कै लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किस ही वाद घाट किस ही पै सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन्हें हो चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना ब्यापै माया। संत प्रसाद मां सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया। अपने घर लै आया खाटे तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। जिहवा एक कवन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ। कोट प्राध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महल

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ, चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके, एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला, तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेश लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे, चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे, तनासरी महला पंजवा कार अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै।

निर्तन कहो तन अंदले कहो टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोइथ पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनाश्री महला पंजवां, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नाम निधि सिद्ध हर, लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का, रव रया सर्व ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंचन हारा, जा कै अंग गुसाई, जमकी त्रासन कै जिसमृत, नानक नाम ते आई। तनाश्री महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देह गर्भ है, पूमवंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा, त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बेत तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हार है रहाओ। आन त्याग पय के आसर, शरण शरण कर आए, संतानुग्रह पय मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनाश्री महला पंजवा, जा कहो हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस तां कै, जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन, सह समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे ही अरे, संग पुनीता देही, जन की तूर दे हो कृपा निद, नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा, जतन करै मान खुडहै कावै, ओह अंतर जामी जानै, पाप करे कर मुकर पावै, पेख करै निर्बन, जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताकै उत ते उत पेखै, आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा, नाम गुर दी होए अपने, जाके मस्त करमा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरमा। जन को नाम वडाई सोब, नामो गत नामो पत जन की, माने जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पाले, से ही पूरा सहा, नाम ब्योहारा नानक आधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा, नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे, माथे परोर वाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल, तुम तव रखन हार दयाल, सुंदर सुगड़ बेअंत पिता प्रभ, हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन ने ऊपर साल, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांध्यो पाल। तनाश्री महला पंजवा, अपनी उकत खिलावै भोजन, अपनी उकत खिलावै सर्व सुख, भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल, जो राख महतारी बारक कहो, तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक, सदा सलामत देवा, ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले, नानक संत सेवा। तनाश्री महला।

मंत्र राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहूं जात। सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

संतन का संग पावा, सोग अगन में माना व्याप, आठ पहर गुण गावा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदयंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापण, तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानख कहो जाचत शरम पाई है, प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ, कोखे मुनजन सिमरत पुराना, वेद पुकार कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई है, दुवै सोहेले लोक, आन अचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से सोक, तनासरी महला पंजवा, तृष्णा बुझे

जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चुग चुगै प्रभावै सरवर मैं हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सह समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिपवन जोत रहे लिव लाई सुर नरनाथ सच्चे सरनाई आनंद मूला नाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हमें मार मिले पगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मैं आए जन्म पदा

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मनपति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिलै मिलिया प्रवान नात स्मरण न आवण जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोभ अवर नहीं कारा साचो ठाकर सच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिलै मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घर पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पयावै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए आचारा विचार शरीर आ जुगा सहज मन तीर पल पंकज मैं कोटो धारे कर कृपा गुरमेल प्यारे

गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरणी धरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानण ने सा तीर्थ मजना साचना लागै मैल क्या मल धोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आ पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़े सुवाया गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच करै आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर भरम चुकाए अकथ कहाए सच मैं साच समाणा आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मन अंत सिखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक साहब दोहरा वाद वधंदिया जियो दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहेब सब संजापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसै पारस होए जां तेरा मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचै साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम ते आए सा जियो सच नाम ते आई साच वाई गुरमुख साच पछाणा दीना ना दयाल निरंजन अंदन नाम वखाणा करनी कार तरो फुरमाई आ मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी तनासरी संत महला पहला पिरसंग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखे आला लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणिया चार नहीं।

जियो। रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी नहा प्यारी, निम्न भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम, रसमय रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती, लाल पही मन मारी, नानक साच वसी सोहागण, पिरस्यो प्रीत प्यारी, पिर कर सो है नार जे पिर भाव।

हमरे मन तनु राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्भाषा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया, रहाओ ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा, रहाओ।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कोल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, बिशव का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बाधवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओपाड़ी ले रावण बाण, साल बिसाले आन तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीट सरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन। ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति मंग।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा।

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ इंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा। आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा। अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई। सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ। दिसै सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई। एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सही संत सुभाई। तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोबिंद जीवन प्राण धन रूप। अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप। अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप। हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक। काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पाव के कूप। जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर। चरण गहो बकों सुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर। या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर। जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है। कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ। अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है। आन्यो पावना जीवत मीना बिन जल मरना ते है।
ਹਾਮਿਆ ਨਾਥ ਨਾਥ ਹਰ ਸਰਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਕੇ ਹੈ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰੇਮਠ ਗੌਰੀ ਜਿਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਿਨ ਰਸ ਪੀਓ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਹਮਾਰੀ ਲਾਏ ਲਏ ਲੜ ਦਾਸ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉਧਰੇ ਉਧਰ ਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸਰਣੀ ਉਧਰ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਰਹਾਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਨੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆ ਭਰਨੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰੋ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਆਪਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾਓ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਹਚਲ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਣ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਬਿਨਸਤ ਖਾਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਬਿਸਰਾਮ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਜਾਇਓ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਗ ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੀ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਚਿਓ ਜਸ ਹਰ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ ਸੰਗ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹਨ ਬਨ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ। ਰਤਨ ਰਾਮ ਕਢੀ ਕੇ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਜੂਰਾ।

कहया ना मन सिर खाक शान जिन संग मंतन जालिया। श्री राम रंगया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवां। वार

मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ साच पूर रहे हो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक परचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना विनाशन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहोथड़ै थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद कर निमया अग्न उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर धार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माण जिस संग तै स्यों लाइय ने हो सो सहो बिंद न विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया ले जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटम जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत भावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सो दिन पवित्र तै उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन मरण पै कटी है।

लोको गृह रचनाया पारंग मन बिलास स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृमै मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह सो साई जय विसरै नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सै त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र नाठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदर प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसन अरे चंत मूड़े अज्ञान अंद नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदे ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया क्या बेचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जगते पृथ्वी नव खंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमण कौत कोट तमासया चेतना आव सुनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिर सैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग ना चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दया नाल ना चलै सो क्यों संजीऐ तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीऐ हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजीऐ प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजीऐ।

अज्ञान परम दुखटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा। सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादं अलबंधन कुसुम बसन चरण कमलर चंत संत नानक आना रुचते मुखडे गाऊ पलक छड़ियाना डेऊ चित जीवन संगम ते स्थणी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन

नाद कुरंग कै बेदया सन मुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सियाराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक नाथी वै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच धनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्स मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदूत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सावेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख लेवो दीन दयाल परमत बवहारे आ भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरप भय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दया।

चरण पखार करो गुर सेवा, मन चरामो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवा, सतगुरे आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़या लेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंधु सदा मेहरबाना, सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछै पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निध गायण, सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगै सोई सोई पावै, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटै, पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचारियो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हटियो, पार ब्रह्म पर भय दयाला, शिव कै बाण सिर काटियो रहाओ। काल जाल जम जोहे न साकै, सच का पंथा थाटेओ, खात खर्चत किश निखुटत नाही, राम रतन तन खाटेओ। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक, सब देखै लोक सुबाया। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलवख परे, साध संग भजन कर स्वामी, ठाकन कौ इक हरे रहाओ। अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम ना जाही करे, जिसका बोहित तिस यारा दे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहै, ओए ऊहां ही है तरे, जोर सकत नानक किश नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड़ कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागै, जाकी प्रभया गै अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले, बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जने अपने, हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हरनाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जाका वड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परयो दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्ब अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाई है, माया रच बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक अनद करे हर जप जप, सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा, कर तीजा चौपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हां हां लपट्यो रे मूड़े, कछु ना थोरी, तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ, जो पराई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचियो जित भूख तसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परिया, गुर प्रसाद नानक को तरिया। टोडी महला पंजवा,
हमारा एक है हरी हरी आन अवर सियाण न करी रहाओ। वड़े भाग गुर अपना पायो गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया सब किश तिसके गृह मैं आया। टोडी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर नी हो ना होए रहाओ। हाँ टूडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्ना लेख लिखियो तुर माथ एह बिद नानक हर नैन अलोए। टोडी महला पंजवा गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे हियो महराज री मायो। डीहर न्याई मोयफा क्यो रे रहाओ। कणो कणो कणो सद लोड़ै बिन लहना कैठ पायो रे। महराज रो गाथ बाहू सो लुबड़ो ने पागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राहित मिट्यो रे। जा को लहनो महराज री गठड़ियो जन नानक गर्भासना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अहंग रोग एह तंते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरा हीर दीन। रूप अनुरूप मेरो कश ना बिचार्यो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे देखन कौ दर्शन प्रभ नीत। बाट घाट तोसा संग मोरे मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही अरे ते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड सुजान। कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रमान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूरा गावे समर्थ कान। तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दै जसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबो न मरते चूर। तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम। दर्शन देखन कौ तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तनते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जाको जास।
ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਨ ਰਹਾਓ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਚਤਰ ਸਭ ਏਤਾ ਰਿਧ ਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਵਾਮੀ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜਨ ਸੋ ਖਾਵਨ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦਾ ਅੰਨ ਬੀਓ ਦੂਸਰ ਲਾਵਨ ਰਸਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜਸ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਜਾਵਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ ਰਹਾਓ ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਿਤਰਾਈ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਸਾਧ ਮਗ ਚੱਲ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਕਾ ਇਹੋ ਉਤਮ ਫਲ ਬੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਨ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਖਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਦਹਿਨ ਭਏ ਮਲ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ ਰਹਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਬਨਾਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਸੇ ਮਦ ਢੀਠੇ ਅਸਰ ਪਏ ਸਾਚ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਹੁਰ ਨਹੀਂ ਪੀਠੇ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਰੰਗ ਰਸ ਜੇਤੇ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਜਾਨੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਬਿਹੂਨ ਚੱਲੇ ਸਭ ਮੂਠੇ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਾ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਕਰ ਭਲੋ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਓ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ ਜਾਂ ਕੋ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਕਰ ਗਹਿ ਕਾਢ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ ਬਿਕਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਬਹੁ ਨਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਪੁਨੈ ਪੁਨੈ ਨਮਸਕਾਰਾ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗਵੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਦੁੱਖ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ ਸਿਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਉਤਰੀ ਭੁੱਖ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਕਾਮ ਤੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁੱਖ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁੱਖ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਓ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਣ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ ਉਰਜ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ਰਹਾਓ ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਹੋ ਸਾਚ ਜਾਨਕੈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਜੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਮਗਨ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਨਤ ਗਤ ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ ਰਹਾਓ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਕੈ ਬੇਦ ਬਖਾਨੈ ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾ ਮੈਂ ਜਾਨੈ
कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पथ पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई। पणत नाम देव सुकृत सुमत भय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छ रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छ राजा के कर सांडी गो। बामन के कर रांडी अच्छ रांडी सांडी हांडी गो। बाणिये के कर हींग अच्छ।

गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुरदार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादरो दोजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खान आए जब अजरा ईल बस्तनी तब चे कारे बेदाए हवाल मालूम कर दंग पाक अलाहा बुगो नान के अरदास पेश दरवेश बंदा तिलंग कर दूजा महला पंजवा तुद बिन दूजा नाही कोए तू करतार करें सोहोए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानकेक सब उपर।

दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनीटी हाथ करो फोनो नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरनावण पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कह कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तो तिस सज्जन से ही नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित चाकरियां चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंगै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला।

तेरा सदड़ा सुनि जै पाई जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणै जो खट्टे सो खाए, अगै पुछ न होवई जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कांडियै जैसी कार कमाए, जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए, नानक कम न आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडै, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया, जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना दे संतर पवे, जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सदगुर भेटै ता सहसा टूटै, तावत वर्ज रहाई है, निजर चरै सहे तुन लागै, कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, नानक जीवत्या मर रही है, ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजै, तौ निरपो पद पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सहो तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी।

मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेशया हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद एआणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नव लाया सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा सुध ना होई आन दिन कर्म करै बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरै रंग कदे ना चढ़ै जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग ना जाई। अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए खुआई। बाहर पेख बहुत चितराई, मनुआ दे दिस्तावै हमें ब्यापिया शब्द ना चीने, फिर जूनी आवै। नानक नजर करे सो बूझे सो

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती। लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे। हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका। मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए, जन नानक तिन को वंदन परसे। जय कृपा करे हर राय, सूही महला चौथा। तिन्नी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, ते सहलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका, जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक कै पवै इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो। हर सेवक पाए निस्तारा, सूही महला चौथा। जिथे हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय। हर तन कित ना पाई, हर रतन का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारी है। वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर मानको। हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई। हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुट नाही। हालत पलत हर तन की, भगता को मिली वडियाई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी है, जमदूत किसे का गवाया ना जाई। हर तन का ओचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहेले पए, हथों छुड़क गया। अगे पलत सागत हर दरगै टोई ना पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सूही महला चौथा, जिसनों हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै, सो भगत सो परवान। तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान। रहाओ सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो नेफर सब अज्ञान।

उनका उतर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुम्हरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना, जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा, तू करता सब किछे आपे जाने, क्या तुद पै आग सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तेहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड़ियाई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विच हों मैं कार कमाई, जिन किए तिसै न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हों मैं रोग सब जगत ब्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर पावै त्यों रखी, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों पावै तिवें बख्श रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कर लाया, जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद सिरठ सब साजी, कोई सेवा करो जे किश कीता होवै, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करै से रोवै, हर की वड़ियाई हों आख ना साका, हों मूर्ख मुग्ध नीचाण, जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा, कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कत गयो ओ काते आयो रहाओ,
जल ते उठै अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा, सहस घटा मैं एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रगास, भरम लोभ मोह माया विकार, भ्रम छूटे ते एकंकार, ओह अविनाशी बिनसत नाही, ना को आवै ना को जाही, गुर पूरै होमै मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई, सुही महला पंजवां, कीता लोड़ै

तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ। जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पति आरै कछु ना पाइयै, साच लगै ताह मैं जाइयै। जिसनो लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद पावै ता आणै रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सुही महला पंजवां, तन सोहागन जो प्रभु पछानै। मानै हुक्म तजै अभिमानै, प्रेसे राती रलिया मानै। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ। सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै। सास सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल ना पावै। फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै। बिनो करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहया भरपूर। जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवा। गृहो वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर को लोड़ी। कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ। सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे। जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यो हियो मिलन प्रभताई खोजित चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे ग्रह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सदजा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन कहो हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगमे अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई है।

संगा उहां संत करै हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जां कै दर्स पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जां का शब्द सुनत सुख सारे जां की टहल जमदूत बिदारे जां की तीरक इस मने सुधारे जां कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन ना पावै सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद सहा सहा वापारी मरना जो दिसै सो कल खरना कूड़ै मोहे लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक कौ करहो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला पंजवा घट घट।

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा। जा कै सिमरन कछ पौ ना ब्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूर्त दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ। साध संग जन मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी। काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी। कहो नानक कहो तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। सूही महला पंजवा, लोभ मोहे मगन अपराधी, करनहार की सेवना सादी। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोहे निर्गुणी आरे रहाओ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानुखिया अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरनाया। सुही महला पंजवा, पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त कौ जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सो किश कर जित छुटै परानी, हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ। घोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारा कछु न जाता। रखे पोचार माटी का भांडा, अत कुचीर मिले जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोहे बादा, महागर्त में निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जै, डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवा, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इउं दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ। एक बिना दूजा नहीं जानै, घटघट अंतर पार ब्रह्म पिछानै। जो किछ करै सोई भल मानै, आदि अंत की कीमत जानै। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कै हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवा, गुर परमेसर।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

उठसवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टूट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे,

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परण पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

दर्शन कह लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोख आए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरे हाथ प्रभ, आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानो। तिसका पनिहारा, भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजब मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड। ताहू मैं पाओ, राख लेहो एहो बिखई जियो। देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक है। अवर नहीं को लेखै, संत लाग मने छाड़। दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया। तहां आनंद करिया, नै मरिया नै जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसे आया कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्र माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया। गही ओट साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कर सेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ।

तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अति ऊचा कोई अवर ना तेरी पत ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा सूही महला पंजवा विसरे नाही जे तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहर जे तुद ते आई निर्मल होवे देहा मेरे राम हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरै बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बिपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना इस कल में मैल भरी जै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जै वेदक तेब सिमरत सब सास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कड़कट नानक माजा सूही महला पंजवा जो किश करै सोई प्रमानै ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई भगता बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मैयल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरे जमता कै निर्णय आवै जन्म जन्म का विछड़िया होवै तन हर स्यों आन मिलावै माया मोह परम पौ काटै संत सरण जो आवै जिहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै जन की महिमा केतक वर्णो जो प्रभु अपने पाणे कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे

प्यास चुकाई मेरे राम राय तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूब ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहूं काची देह आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर

तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर तहारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पै सारी, तुद जे वड अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भक्त तुहारा सोई, दोय कर जोड़ मांगो एक दाना, साहेब तुठे पावा, सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा, सूही महला पंजवा, जिसके सिर

तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पौ किश नाही जम नहीं आवे नेरे रहाओ जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बक्सना मेट कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आए न

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चेतना आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता

सच्चे की लिव उबर है बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलाए मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होने गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना विसरै निदारा आधार जियो सुही महला पहला काफी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया हाँ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रस मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी।

मैं तुझ ऊपर बहु माणिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वेखाल एहा पाई मुदा तड़ी नित हृदय रखा समाल पाव जुलाई पंद ताओ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुरथी वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम न पुजन तेरिया तू साही हूं साहो हौ कह ना सका गुण तेरिया सहियां तऊ असंख मन्यो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देहे दर्स रंग माणिया जय डिठे मन तीरी है किल विख वंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सहे सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाए सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन मरण मोह दुख।

नरक स्वर्ग अवतार माया तंदया। सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारया, नाम बिना सुख नाहें सर पर हारया। आवै जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिन कौ भय दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजै कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चिड़ंदियां, कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी, यह जियो। से गुण मंजना यावनी, हो कै जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा, हो क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा, हो सतगुर बाणा ते रह जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो, से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो, हौ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, सातन चली साहोरै क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो, तै सह नालो मुती अस दुखा कु तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा, एक नानक की अरदास जियो। सवरा तीसो हागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी राह जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू मंत्र साबाह जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीखो दास जियो, पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल आकाश जियो। पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परिया जियो, पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो। पाणे सहु पिहावला यावन जान मुया जियो, तू सो अगमा तोलवा हों कह कह टह पिया जियो। क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन पुख प्यास जियो। गुर शब्दी सहु पाया सच नानक की अरदास जियो। सूही महला पंजवा गुणवंती, जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई

निश्चल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु होए दासा, जीवत मरिया भौ जल तरिया, जे थीवे कर्म लिखिया सा, गुर से बीजे अमृत पीजे, जिस लावै सै ध्यानो, नानक शरण पया हर द्वारे, हौ बल बल सत कुरबानो, सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया, सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया, जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया, वड पागी दर्शन पाई है, थियो न माना सत कुरबाना, सगलाया मिटाई है, ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा, हम तिस पाया विचाया, नानक दीन सरन सुख सागर, राख लाज अपनाया, सूही महला पंजवां, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो, हर अमृत भरे भंडार, सब किश है कर तिसके बलराम जियो, बाबल मेरा वड़ समर्था, करण कारण प्रभारा, जिस मृत दुख कोई ना लागे, पौजल पार उतारा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्त कर कर जीवा, नानक नाम महारस मीठा, अंदन मंतन पीवा, हरे आपे ले मिलाए, क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो, जिसनो तेरी टेक, सो सदा साजी वही बलराम जी हो, तेरी टेक तुझे ते पाई, साचे सृजनहारा, जिस ते खाली कोई नाहीं, ऐसा प्रभु हमारा, संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपुरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान, मान महत सच पाया बलराम जी ओ, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अबनासी गाया बलराम जी ओ, गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जमिया, सत संतोख वजह वाजे, अनहदा चुनकारे, सुन पै बिनासे, सगल नानक प्रपुरख करने हारे, उपजया तत ज्ञान साहुरे पेईए, एक हर बलराम जियो, ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना सकै, पिन कर बलराम जियो, बिस्म पेखै बिस्म सुनिया, बिस्माद नदरी आया, जल थल महियल पूर्ण स्वामी, कट कट रहा समाया, जिस ते उपजया तिस माहे समाया, कीमत कहन ना जाए, जिसके चलत ना जाही लखणे, नानक तसै ते आए, राग सूही शंत महला पंजवां, कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अंदन जागे, हर रंग जागे पाप भागे, मिले संत प्यारिया, गुरचरण लागे परम भागे, का सगल सवारिया, सुन सरवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड भागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनहत शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस्य उपजे मन कणा, मन तन निर्मल देख दर्शन, नाम प्रभ का मुखपणा, होए रेण साधु प्रभ आराधु, अपने प्रभ पावा, बिनवंत नानक दया तारो, सदा हर गुण गावा, गुर मिल सागर तरिया, हर चरण जपत निस्तरिया, हर चरण त्याए सफल पाए, मिटे अवन जाना, पाए भगत सवाए हर जप, अपने प्रभ पावा, जप एक अलख्या पार पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई, बिरमंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई, पतत पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा, गुर संत पाया प्रभ ते आया, सगल इच्छा पुनिया, हाँ ताप बिन से सदा सरसे, प्रभ मिले चिरी विशुन्या, मन सांत आई वजी वधाई, मनो कदे ना विसरै, बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया, सदा भज जगदीसरै।
ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੜਦਾਣਾ ਕਰ ਮੈ ਰਮਤ ਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਦਿਹਾਈ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋ ਵਿਜੈ ਤਾਂ ਗਤ ਜੀ ਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕਾ ਠਾਕਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੁਮ ਗੌਹਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਪਿਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੂਚੇ ਹਉ ਇਤਨੀ ਕਲਹਰੀਆ ਰਾਮ ਹਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾਂ ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨਾ ਚਰਣ ਹੈ ਸਰਣੀ ਦਾਸੈ ਦਾਸੀ ਮਨ ਮੌਲੈ ਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ਤੁਝ ਉੱਪਰ

सोई जाने सोई पछाणे जाको नदर सरम दे मनमुख भूली बहुती राही फाथी माया फंदे। ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हाँ बल जाई लख लख लख बरिया जन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना प्रभु जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला कहो नानक कहो निरपा होई सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बने अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्वरया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभु कौ बलिहार है नानक सतगुर बाणा। ऐसा गुरवट पागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किलवखि उतर हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहुड़ जोड़ ना आई है। गुरचरणी लागे परम पौ भागे मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै। नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका साथ तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मर नया वह जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय अबनासी राम। सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम। कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना। हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहित आना काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा कीजै हर गुण सुनिया अविनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम। पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे। महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग। कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग। एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला।
ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਮ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸਗਲੇ ਪਾਪਤ ਜਾਵੈ ਰਾਮ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ, ਕਥੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਭਲਾ ਸੰਯੋਗ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚਾ, ਅਪਚਲ ਨਿਵਰ ਖਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ।

जरा हाक दी सब मथा की एक ना था किसमाया बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहा हो तब लग प्राणी तसै सिरे वो जब लग कट मैं सासा जे कट जाए ता पाओ ना जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द पसावै अंतर चूकै तसै प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन टाले पासा जो जन जान भजै अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर तेजन कबो ना हारै टाल जो जानै पासा। सूही ललित कबीर जीओ एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगै हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन्हों लिया उबारी रहाओ नौ डाडी दस मुंसफ धावै रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापै नाही बहु बिस्टा ला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन्दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना काई संतां को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहकी सार सुहागन जानै तज मान सुखरलिया मानै तन मन दे न अंतर राखै अवरा देखना सुनै अपाखै सो कत जानै पीर पराई जाकै अंतर दर्द ना पाई रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी जे ना निरंतर भगत ना कीनी पुरस लात का पंथ दुहेला संगना साथी गवन अकेला दुखिया दर्द वंद दर आया बहुत प्यास जवाब ना पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानो त्यों कर गत मेरी सूही जो दिन आवै सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही संग चलत है हम्पी चलना दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग याना तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबर आवै सब कट पीतर हाट चलावै कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम समार सवेरा जन्म सिरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दह दिस अंधियारा कह रविदास निदान दिवाने चेतस नाही दुनिया फन खाने सूही ऊचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रहन ना होई एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी जल गयो कास रल गयो माटी रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा ओए पी लागे काड़ सवेरा घर की नार उरै तन लागी ओ तो पूत पूत कर भागी कह रविदास सवै जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो बावल होई सो सहलो रहो तै सह मन में किया रोस मुझ अवगन सह नाही दोस तै साहेब की मैं सार ना जानी जोबन खोए पाछै पछतानी रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हौ बिरह जाली पिरै बिहून का तै सुख पाए जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए विदन खूही मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मिली
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਹੋ ਬੇਲੀ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुई ते, तेरी सब असनाई तेरा यंत्रना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहों बेगाना पौका स्तंताई, भगतहीण नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदिर तन वेसकल अंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवा।

अगम गोचर लख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हौ जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवरना सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने। मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हम मरो दुखाली। सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हौ मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया। दूजा पाव ना दे लिव लागणो, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तैं दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दया पदाता, क्या ए जंत विचारे। मुक्त बंद सब तूते होए, ऐसा आख बखाणे। गुरमुख होवै सो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारे। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चा आप सवारे। परम पुलाने से मनमुख कही है, नारो वार ना पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माहि निस्तारे, नानक भाग होवे जिस मस्तक। काले मार बिदारे, बिलावल महला तीजा। अतुल क्यों तो लिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए। तिसते दूजा नाही कोए, तिसदी कीमत किकू होए। गुर प्रसाद वसै मन आए, ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराप कसवटी लाए, आपे परखे आप चलाए। आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब तिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए। जिसनो लाए लगे तसे आए, सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे, आप आप बुझाए आपे जापे। आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवको सेव साहिब ते।
क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंधन लागे सही ध्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अवमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तवै कोई चाले, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब, कौन जाने तेरे कामा, एक ना करमै दे वड़ियाई, एक परम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा। पूरा थाट बनाया पूरा, वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै, सो सतगुर माए समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा, नर मनुखा नो एक निधाना, जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे सिउ प्रीत लाए, चूकै मन अभमाना, कहत सुनत सबे सुख पावै, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावै आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाउ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सहे सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए, हर जो आ वसे मन आए, आपे सोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए, निकर वासा हर गुण गाए, रंग चलू लै हर रस पाए, एहो रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तन बौन ना फेरा, नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा। पूरे गुरते वड्याई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई, हाँ मैं माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेखै, बहु न मरे न जंपे खै, कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुर दिखाए गया अभमान, सद ही लागा सही ध्यान, अंधन गावे एको नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जै देखा तरिया समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे भाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निदान दिखाया, गुर का शब्द वत मीठा लाया, नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यो करना, ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना, ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे, हर उदर्यो पर्यो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा।
हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरखिया जन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन भज राम नाम मैं रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो निफल कामा रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड़िया करमा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़करमा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरा सतगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोहो तरा सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेव ना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोए थे कल जुग खेवट गुर सब तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख थिरखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ काया नगर मैं राम रासी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो राम नाम रस राम रसायनो हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अन क्यो पाव चितवी है बहु तेरे सा होवै जे बात हो वैनी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानके प्रभ करते स्वामी ज्यो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा अंध मूल त्यायो पुरखोत्म अंध दिन अंध आनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वड़पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड़ माया के बद्धक विच माया फिरे फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़पागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै ज्यों राखै तवै रहंदे राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन्म लिया हर पासी
ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਨੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪਗ ਲਾਵਨੋ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਤਿਸਿਓ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ ਤੋਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਏ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ ਵਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਇ

हाँ मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक, अवर स्याण पा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला परपूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम वखाणे। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िए प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे। चूके जमकी काने, तना प्राप दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाने, ऊंच या पार।

पै बिन से तिह लोक के पाए सुखथान, दया करी समर्थ गुर बसिया मन नाम। नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार, करण कारण समर्थ प्रभ हरग म्यापार। बिलावल महला पंजवा। सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना, करण हर ना बूझई आप गने बेगाना। दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चित आए, संतन कै आनंद हो नित हर गुण गाए रहाओ। ऊचे ते नीचा करै नीच खन में थापै, कीमत कहीं ना जाइए ठाकर परतापै। पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभ तेरी सरनाई, हर दिन सरैण नानक जपै साध साध बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल ढोवो एह सीस कर।

देव सुहनी साध के बीजन टोलावाओ रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावाओ। ओवा रस में सांत तृप्त होए बिख्या जलन बुझावाओ। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावाओ। करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावाओ। उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावाओ। नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावाओ। बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै। जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै। वडभागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी। प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई। अमृत नाम जल संचया गुर पै सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। काटी सिलक प्रभ मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ। सर्व सुख नानक पाए संग।

प्रव्यग्म अपार वस्त्र कमावत सब सुखी किशु न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर हरा दिया होइ आरोग रामचंद की लष्ट का जिन मार आरोग रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचे भोग साध संगत कह वारण मिलया संयोग जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एको अंकार सदगुर प्रसाद अवरयो पाप सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर्मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चित वह साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागे नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै तंत मंत न जो है तित ताख न लागै। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागै आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किछ नहीं करना दुख न

गावत प्रभु नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पै राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पै काम पौ नाठा प्रमिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जान तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पै पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा का वड प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दुपदे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपै दान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्स रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सबहू तले तले सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हों। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बाल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवां। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजमा चौपदे दोपदे कर सतवा एको अंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन न जाए वड्याई। मगन पय ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रिया पारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जहां से राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बखैठ गौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवार हो पावक तले जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मने अधारो। चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवी सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधिया कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगती त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, उतकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काय ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट धरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहूं सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे, तिस्या गया क्या कहता रहाओ, अन बोले कहो तुही पछान, जो जियन मैं होता, अरे मन काय कहां लो डह कह, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरी है, रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितव नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानकारा खाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे, रहाओ काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकू मैं परयो परानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना, रहाओ एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कश खीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, रहाओ

परमेश्वर सतगुरु वस कीने जिन सगले जंत, चरण कमल नानक शरण आई, राम नाम जप निर्मल मंत, बिलावल।

कहाओ। गुर को शब्द मेरा ही हरै बस जाय, हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पलमा न, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावै त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक ते राओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल ते अगर मैं जन आप उधारे, कर अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृपते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत हारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपूरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

तन तन कलातो सब देख अबमहना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ। कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी। खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल। गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिनसे दूरे। दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए। तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला। नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुखथिया। सूकर स्वान गर्प मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला। गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाई है, बंधन बांध्या आई जाई है। गुर सेवा तेल है पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ। साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सी जय दर सोए। सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै। हुक्म पछाण सच्चा दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास। रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका। ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए। बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान। अंतर लोभ झूठ अवमान, बिन नामै पाज रह निदान। सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै। बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ। गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो। साचै नाए वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै। मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै। हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी। तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै। आपै आप मिलै चुकै अभिमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै। सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई। कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई। दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई। गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवां एको अंकार। सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ। एक गिरो दस द्वार है जाके, अहनिस तस्कर पंच चोर लगैया। धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया। कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया। हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया। जमजा गाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया। हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया। गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मंत्र बतै, सरवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाण है, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ।

मन तन काढ़ दे गुरे आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाई कोई आण संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काढ़ दे चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबोध गुण कामन कर हर प्रभ लैया भगत वछल उवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगै जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनिया मन मोती चूर बड गहन गहनैया हर हर सरदा सेज विशाई प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पहिया कह प्रभ अवर अवर किश की जय सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया कियो सिंगार मिलन कह ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पहिया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करे तेरे वस पहिया दयाधीन करो रख ले वो नानक हर गुर सरण समैया बिलावल महला चौथा मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख भुलाने मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमल अमली मर गैया जिनको प्यास होए प्रभ केरी तिने अवर ना पावै बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै हौ तिस विटो बल बल घूम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन्मे ले जा सत सत सतगुर सरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकर महल ना पावे मनमुख परमैया गुर गुर कर तो सरण जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लोबैया बेसवै का बेसवा कै घर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकर कृपा तारी बहां पकड़ नानक कढ़ लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी कर बारवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल आधार हौ जाओ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे तज आन कत ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उधार पैतरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप बेकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रभ पेखी है बिस्माद चख आनंद पूर्ण साध नह डोलिए इतयूत प्रभ बसे हर हर चीत ते नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जमना पेखे नैन सुन मोहे अनहत बैन हर शरण सूर गोपाल प्रभ

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

सर्व सुखानिद पियो, सुख सागर प्रपेटे है, नानक सुखी होत एहो जियो। संत सुख सागर प्रपाई है, जब होवे भागो राम, मानन मान वजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम, नानक पौ सरनाई राम राय, थिर होए सुहागो राम। सो प्रभ तज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे अज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत पाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरै बल गईये, दो चारण रसना राम। प्रभ भगत वछलने सेवही, काया काक ग्रसना राम। ब्रह्म ही दुख न जानही, कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना, बिष्टाक्रम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे, होय मिल बैरागन राम। चंदन चीर सुगंध रसा, हमें बिख्यागन राम। ई तूत ने डोली है, हर सेवा जगन राम। नानक जिन प्रपाया अपना, सा अटल सुहागन राम। बिलावल महला पंजवा, हर खोजो वड भागियो, मिल साधु संगे राम। गुण गोविंद सद गाई है, पार ब्रह्म कै रंगे राम। सो प्रभ सद ही सेवी है, पाईए फल मंगे राम। नानक प्रभ सरनागति, जप अंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै, जिन सब किश दीना राम। वड भागी मेला वड़ा, गुरमुख पिर चीना राम। बाहां पकड़ो तमते काढ़िया, कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै, शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको, प्रभ अंतर जामी राम। सिमर सिमर नारायण, पै पार ग्रामी राम। गुण गावत गोविंद के, सब इच्छ पुजामी राम। नानक उदरे जप हरे, सबहू का स्वामी राम। रस पिन अड़े अपने राम संगे, से लोइन नीके राम। प्रपेक्त इच्छा पुनिया, मिल साजन जी के राम। अमृत रस हर पाया, बिख्या रस पीके राम। नानक जल जलै समाया, ज्योति ज्योत मीके राम। बिलावल की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, हर उत्तम हर प्रभ गाव्या, करनाथ बिलावल राग। उपदेश गुरु सुन मन्या, तुरमस्तक पूरा पाग। सब दिन सरैन गुण उचरै, हर हर हर उर लिव लाग। सब तन मन हरिया होया, मन खिड़िया हरिया बाग। अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर चानन ज्ञान चराग। जन नानक जीवै देख हार, एक निमख कड़ी मुख लाग। महला तीजा, बिलावल तभी कीजिए, जब मुख होवै नाम। राग नाद शब्द सोहने, जान लागे सहित्यान। राग नाद छोड़ हर सेवियै, तां दरगै पाइयै मान। नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी है, चुकै मन अभमान। पौड़ी तू हर प्रभ आप या गम है, सब तो दे पाया। तू आपे या वरदा, सब जग सवाया। तू दे आपे ताड़ी लाई है, आपे गुण गाया। हर त्यावो भगतो दिन सरात, अंतले छड़ाया। जिन सेव्या तिन सुख पाया, हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा, दूजे पाए बिलावल ना हो वई, मन मुख थाए ना पाए। पाखंड भगत ना हो वई, पार ब्रह्म ना पाया जाए। मन अठ कर्म कमावणे, थाए ना कोई पाए। नानक गुरमुख आप विचारी है, विचों आप गवाए। आपे आप पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म वस्या मन आए। जमन मरना कटिया, ज्योति ज्योत मिलाए। महला तीजा,
बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सिवन लिवला।

है गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत में लाए इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद चित लाए नानक जिन को नजर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए महला तीजा सतगुर की सेवना की शब्द ना लगो पाओ हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुओ मन हठ कर्म कमाव दे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए पौड़ी सब वड्याइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैद स्पसरिया गुर कैसे सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छपै ना किसै देश पाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द सोचे नानक सह जे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदय पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन ओना प्राया भला ना सुखाई क्या होवै किसी दी क्या होवै किसी की चख मारी जा सच्चे स्यों बने आई जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब चख चख मरै लोकाई सलोक महला तीजा त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोहे माया चित लाए हर सुख पल्लर त्यागया ना विसार दुख पाए मनमुख अज्ञानी अंधले जन्म मरै फिरे आवै जाए कार्य सिद्ध न होवनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिले सो हर हर नाम ते आए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तन बल जाए महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन मोया संसार सब को जम के चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा सोबरै जिस बख्शै करतार नानक गुर प्रसादी हो मंतांतर है जा छोड़ै हंकार आसा मनसा मारे निराश होए गुर शब्दी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई कूड़ यारा के मोह फिटकी है सच भगत वड्याई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई

कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा बिलावल राख लिहो हमते बिगरी सील धर्म जब भगत ना कीनी हाँ अवमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संचिए काया ए मिथ्या काची गगरी जिने निवाज साज हम किए तिसै बिसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कहे कबीर ए बिनती सुनियो मत कालो जमकी खबरी बिलावल दर मानदे ठंडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस तुमार मंगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत ना बार बिलावल डंडा मुंद्रा खिंथाया दारी भ्रम कै पाए पवै पेख तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर भज बवरे रहाओ जे तू जाचै सोत्र पवन भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत न उपजै जन कहो जन कहां करै बेचारे रहाओ त्रिग तानो त्रिग तानो त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी इस माया कहो दृढ़ कर राखो बांधे अब चनी क्या खेती क्या लेवा देई परपंच झूठ गुमाना कह कबीर ते अंत बगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल्यानूप परम ज्योत परमोत परखोतम जा कह रेख न रूप रे मन हर पज।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुन उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बस है, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव निदता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेख कुटल गांठ।

बिलावल जेहे कुल साध बैसन होए बरन अबरन रंक नहीं ईसर बिमल बास जानिया जग सोए रहाओ ब्राह्मण बैस सूदयर खत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर छत्रपद राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे पुरैन पात रह जल समीप पन रविदास जन्मे जग होए बाणी सदने की राग बिलावल एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरपकन्या के कारण है एक भया पेख तारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी तब गुण कहां जगत गोरा जव कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाई है जव जंपक ग्रासै रहाओ एक बूंद जल कारणे

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर काहू की जय साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ। जो दिसै माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश नाम वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारै तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुर बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसै मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

तब भेटे गुरसा दयाल दिन रहन नानक नाम ते आए सुख सहजानंद हरनाए। गोंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन मैं ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारा गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार मत को परम

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपुरे की बेअंत वडाई, गुरप्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करण है जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाई है भाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जा की कोई न मिटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाइए वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति बैसनो रामदास मित नाही।

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्व निधान तेरी दृष्टि मा है। नानक दीन जाचै तेरी सेव, कर कृपा दीजै गुरुदेव। गोंड महल

0: पाहे नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राख राखण हार, तिसका अंकर निरंकार रहाओ। मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है, साध संग जप निरंकार, निंद कै मोह लागे शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन में रुलता खाकू नाल, हैपी साचा होवनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो गुडा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला, ना हो बिनसै ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए, ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग, ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परंपर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेदा भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गत मित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार जाओ, संतन कै संग राम गुन गाओ, संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ता का प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर।
1: राग गौण

गुर कै सिख सतगुरु ते आया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरतै हर द्वारे। जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। नी तरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा रखो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गोंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिया कही है, मिले असंत मष्ट कर रही है। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ। संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चख मारी। बोलत बोलत बड़ै बेकारा, बिन बोले क्या करै बिचारा। कहो कबीर।

अपने कर्म की गत मैं क्या जाना बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा परखोतम, कट बिनसै गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो एहो जियो आए, कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर मैं किन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे।

हरे महावत तु जारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह त्यान, वा कर दे बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई, ताका यंतना को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै, रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजी

अस्मेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हे रहो राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सुनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डार तेहरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई। नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई। जहां जहां तू नारद टेके नैकट कावो मोहे। तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे। गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ। जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला। नाम देव नारायण पाया गुर भेड़ता लख लखाया। जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी। हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर कर तो नहीं दुख जमाए रहाओ। हर हर नक्श हरे पर

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़या आवत देखया था, मोदी के कर खाना पका वाका लड़का मारया था। पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देखया था, रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या, जय देहोरा ना मसीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक उसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहां करे संसार।

अस अवतृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गोंड जे हो 68 तीर्थ नावे जे हो द्वादश शिला पूजावे जे हो कूप तटा देवावे करै निंद सब बिरथा जावे साध का निंदक

कोई पढ़ता सहसा करता, कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तसे त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जय जय देखा तै नरहरी। जीवन तलब निवार स्वामी, अंध कुप माया मन गाड़िया। क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रहा समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कहिए। दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए। जीवत आयो मरिए रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द।

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद रखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे। रहाओ भिखिया पाए भगत पै चल होवे सो तृप्त संतोख अमुल। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए।

भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। हराम कली महल्ला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध भेटन को आए, निश्चौ दे वड़ियाई। गुरतार तारन हारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ, साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरतर लाइया एत। तन कर तुलहा लंगे जेत, अंतर पाहित से तू रख। एनस दीवा बल अथक, ऐसा दीवा नीर तराए। जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन, रहन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महल

मेरे एक खैन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरसरणी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर ऐसे नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे ता का अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जे वड़ भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रत पारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित ना आवे मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तौ दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवे निध पावो इन बे तत बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीना पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतरी सगल बेयोगनी। एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तय हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर योग का तहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने।
ਅਚਰ ਜਗਿਸ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਮੋਲ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਪੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ। ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ। ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਚੀਤਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਇਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਊਨ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ। ਵਰਨ ਨਾ

राम कली महला पंजवा। तू दाना तू अबजल तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एक तू ही एक तू राया, तौ कृपा ते सुख पाया रहाओ। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला, तुम देवो तिल संक ना मानो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बालक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग अगाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन ना जाए। राम कली महला पंजवा। कर कर ताल पखावज नैनो, माथे वजैर बाबा, करनो मद बासरी बाजै, जेवा तुनिया गाजा। निर्त करे कर मनुआ नाचै, आने कुगर साजा, राम को निर्तकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता साज सिंगारी रहाओ। आखार मंडली तरन सबाई, ऊपर गगन चंदोवा, पवन विचोला करते अकेला, जलते उपत होवा। पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा होवा, चंद सूरज द्वे जरे चरागा, चहो कुंट पीतर राखे। दस पातो पंच संगीता, एकै पीतर साथे, भिन्न भिन्न हुए भाव दिखावै, सबो निरारी पाखे। घर घर निरत होवै दिन राती, कटकट वाजै तूरा, एक नचावै एक पवावै, एक आए जाए हुए तूरा। कहो नानक सो बहुर ना नाचै, जिस गुर भेटै पूरा। राम कली महला पंजवा। ओंकार एक तुन एक रागा लापै, एका देसी एक दिखावै, एक रया व्यापै। एक

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली।

कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बंश है पिस्त कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवां करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर भरम भूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं देह बरदानी सागत इवही करत बयानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद तेल करै संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निरजोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ बिश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेसुमार दिग ना डोलै कतहू ना तावै गुर प्रसाद को एहो

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद। राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया। संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत। एहो मन

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जंत

फल। इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत जम कश ना कह रहाओ, बिन हर सगल निरार्थ काम। सोना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा। इहां उहां तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे। किन्ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपै जन कोए। ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार। संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई प्रवान। नानक दास ता कै कुर्बान, आराम कली महला पंजवा। सिंचै दर्ब देह दुख लोग, तेरा काज न अवरा जोग। कर अहंकार होए वरतै अंध, जम की जेवड़ी तू आगै बंद। छाड़ विडाणी तात मूड़े, इहां बसना रात मूड़े। माए माया कै माते तैं उठ चलना, राच रहे हो तू संग सुपना रहाओ। बाल व्यवस्था बार के अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध। तृती व्यवस्था सिंचे माए, बिरद भया छोड़ चले।

गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा कृपाल तुम्हें छडावाओ छुटकै बंद बख्श मिलावाओ नानक जग अंद राम कली महला पंजवा कर संजोग बनाई काश ते संग रहो या नाराज प्रत पार नित सार समार अंत की बारी उठ सधार नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ परानी रहाओ तीर्थ नाए ना उतर समैल कर्म धर्म सब हम मैं फैल लोक पिचारै गत नहीं होए ना बिहूने चल सैर होए बिन हर नाम ना टूट सपटल सोदे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपै जिस आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ जित लावै तित लागै स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो किछ करै सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चूका ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभ की आज्ञा मन मैं मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला जह राखै सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अठसठ तीर्थ जय साध पग धरै तह बैकुंठ जय नाम उचरै

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहे समातुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसै हर नाम। सगल सूखया नांद्या रोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए ना जाए डोले कत नाही जा कै नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरै चिंद नानक कौ गुरदिया नाम संत संतन की टहल संत का काम। राम कली महला पंजवा बीज मंत्र।

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रया प्रभ एक, रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ आठ दस वेद सुने कह डोरा, कोट प्रगास ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे, जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास हे बित, काटी बंद हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे हर जनो। अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बने।

कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मानते कबो न विसर गोपाल, तेरे दास की हो मातूर, नानक की प्रभ सरदा पूर, राम कली महल्ला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोए, तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगे पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सै रचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पाओ पागा निरपव मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, तोट न आवै अखुट पंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार, राम कली महला पंजवा, रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता, मेरे राम को पंडार, खात खर्च कष्ट उठ न आवै, अंत नहीं हर पारावार रहाओ, कीर्तन निर्मोल कहीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाद गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन, भगत संग प्रभ गोष्ट करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्त

अवतार न जानै अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जानै, सुन सुन अवर वखानै रहाओ। संकरा नहीं जानै भेव, खोज तहारे देव। देविया नहीं जानै मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपना रंग करता केलो, आप बिछोरै आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख आखी। नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा, किशु काज न कियो जान। सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म। किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे। तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणपास। नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा, रखन हर दयाल। कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधै जंत। मिलिए प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ। पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ। ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचा पार। सुमत सार।